FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद सुबह 6:05 पर विविध भारती के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। और हम आपको याद दिला दें, रोज़ाना की तरह सुबह 7:30 आप सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतक।

0: समाचार प्रभात सुबह 8 बजे, देशभक्ति संगीत, इसका लुत्फ लेंगे आप 8:15 बजे। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है।

0: प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरित मानस गान भाग 231। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। पर 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। 8:30 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। पर 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 1 मंदाकिनी जोशी का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से। 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल। दिन में 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, यह पुनर्प्रसारण होगा। 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे। फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत 4 बजे गीतों भरी कहानी सुनिएगा उन दिनों की बात है, लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम 5 बजे ये पुनर्प्रसारण होगा।

से आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। छह 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूं जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहां आया हूं। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 231, प्रसंग था अयोध्या कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
2: अच्छा,
1: रागेश्री की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप, इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती?
2: जी, रागेश्री एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है।
1: जी जी,
2: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे।
1: जी,
2: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धैवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सा तार सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और ऋखभ। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के बाद रागेश्री राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो
0: जी। फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी। कौन आया
0: मेरे मन के द्वार,
1: मन के द्वार।
0: आइए सुनते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्रोताओं मन्नाडे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हसरत जयपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी अनाड़ी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

उठा के दे दिया।

0: बाप बेटे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। लिखा था इसे भरत व्यास ने, धुन बनाई थी कल्याण जी वीर जी शाह ने। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद।

0: ट्वेल्व ओ क्लॉक इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग दो महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चाचा जिंदाबाद इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीतकार थे मदन मोहन। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

चाचा जिंदाबाद इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीतकार थे मदन मोहन। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी सासाराम केंद्र से अब प्रसारित होगा आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है नमस्ते रोहतास।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी को नमस्ते। जी हाँ, मेरा नमस्ते। मैं हूँ राजीव रंजन सिन्हा। जिस तरह से सूर्य तेज़ी से ऊपर बढ़ता जा रहा है आकाश में, और सूर्य की स्वर्णिम किरणों और नई आशाओं के साथ आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत भी करते हैं आकाशवाणी सासाराम केंद्र से। आने वाले कुछ मिनटों में हम लेकर आए हैं प्रेरणादायी सुविचार। इतिहास के पन्नों से आज का दिन, रोहतास और आसपास की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। मौसम का क्या हाल है, पूर्वानुमान और समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। तो सबसे पहले आइए सकारात्मक विचारों के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आज का सुविचार है, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मानित करता है। ये था आज का सुविचार। आशा है, उम्मीद है कि ये विचार आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।

और अब अगला जो सेगमेंट है वो है आज का इतिहास। इसके बारे में हम जानेंगे। अब समय है इतिहास के झरोखे से 26 जून की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक दृष्टि डालने का। इतिहास के पन्नों में 26 जून अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। वर्ष 1539 में आज ही के दिन बिहार के बक्सर के निकट चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया। ये युद्ध भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली घटनाओं में गिना जाता है। वर्ष 1945 की बात करें तो आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग की नींव रखी। और आज ही के दिन वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और व्यापक चर्चा का विषय रहा है। आज भी इस पर खूब बातें होती हैं। वर्ष 1997 में आज ही के दिन ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग की पहली हैरी पॉटर पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने विश्व साहित्य में एक नई लोकप्रिय श्रृंखला की शुरुआत की। और आज ही के दिन दोस्तों विश्व भर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस और यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1977 की बात करें तो आज ही के दिन अफ्रीका के देश जिबूती ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की।

आज भी जिबूती में 26 जून को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अब बात उन महान व्यक्तित्व की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बनाई। 26 जून 1892 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमरीकी लेखिका पर्ल एस बक का जन्म आज ही के दिन हुआ। उनकी रचनाओं ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच संवाद का सेतु बनाया, यानी उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उन्होंने संवाद दिखाया है अपनी इन रचनाओं में। 26 जून 1974 को हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म हुआ, जबकि वर्ष 1987 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ने जन्म लिया, जिनकी मधुर आवाज़ ने संगीत प्रेमियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। 26 जून को अब हम उन विभूतियों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, प्रतिभा और कर्म से समाज को समृद्ध किया। आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर और हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार यशपाल जैन को श्रद्धापूर्वक नमन किया जाता है।

आप सुन रहे हैं वो प्रोग्राम जो आधारित होता है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम के तौर पर, इसे हम जानते हैं, जिसका नाम है नमस्ते रोहतास। अब लीजिए, हम आपको बता रहे हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में, क्या क्या हुआ हमारे आसपास। एक दिवसीय रोजगार मेला में 105 अभ्यर्थियों का किया गया है चयन। डालमिया नगर के एक दिवसीय कौशल और रोजगार मेला का आयोजन में ये 105 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 523 दंडाधिकारी तैनात होंगे। आज होगा किला मदार, दरवाज़ा ताजिया का चर्चित मिलाप, कल निकलेगा पहलाम का जुलूस, या हसन या हुसैन के नारे से गूंजा इलाका। नशा मुक्त भारत अभियान सप्ताह अंतर्गत गुरुवार को यानी कल शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मौसम का हाल यानी मौसम पूर्वानुमान, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के अंतर्गत। अब आप सुनेंगे मौसम का क्या हाल रहने वाला है। रोहतास जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आज जिले में लू अर्थात हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं लेकिन गर्मी और उमस का प्रभाव बना रहेगा। हवा उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। आज कहीं कहीं हल्की वर्षा की भी संभावना है लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 जून के लिए लू की चेतावनी जारी की है, इसलिए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि फसलों में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक सिंचाई करें।

धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें और कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव केवल साफ मौसम में ही करें। पशुपालक अपने पशुओं को छायादार स्थान पर रखें और उन्हें पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। फिलहाल इतना ही। अब मौसम पूर्वानुमान समाप्त हुआ।

अब हम आपको बताते हैं कि आज समाचार पत्रों की कौन सी सुर्खी है जो बड़े ही प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। प्रायः सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता दी है कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 164 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने हटाई पाबंदियां, होटलों, दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत मिली है। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने देश के कई राज्यों में मॉनसून की सक्रियता और बिहार सहित अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा की चेतावनी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है कि अमेजन भारत में करेगी 13 अरब डॉलर का निवेश, छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा मुनाफा। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने पीएम मोदी से की मुलाकात।

और इस कार्यक्रम के अंत में हिंदी फिल्म संगीत का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, वो हम आपको अब उस बेहतरीन गीत को पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हमने आपको बताया कि करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, साथ ही साथ बड़े ही सुंदर गायक अरिजीत साहब भी जो हैं उनका भी जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। तो लीजिए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं करिश्मा कपूर पर फिल्माए इस गीत को, सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन चले ससुराल से।

दोस्तों याद कीजिए 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड फिल्में जो भी आती थी, गोविंदा के साथ ज़्यादातर फिल्में होती थी करिश्मा कपूर की, और अपनी बेहतरीन अदाकारी और जीवन शैली को लेकर बहुत जानी जाती रही हैं। अब इनका जो कहते हैं कि इनकी आंखें दुर्लभ हैं, मतलब एक ऐसी एक्ट्रेस हैं ये जिन्हें जन्मजात नीली हरी आंखें मिली हैं, और प्यारा सा निकनेम भी है इनका। उनके घर का नाम लोलो है और उनकी जो माँ हैं बबीता, वो हॉलीवुड एक्ट्रेस से प्रेरित होकर एक जीना लोलो ब्रिगिडा नाम की एक एक्ट्रेस थी, उनसे वो काफ़ी प्रभावित थी और उन्हीं के नाम पर इन्होंने घर का नाम रखा था। 90 के दशक में आप भी जानते हैं कि गोविंदा के साथ उनकी डांस और एक्टिंग की जुगलबंदी काफ़ी मशहूर हुई। लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना।

और बात तब होगी अरिजीत सिंह का बारे में। और दोस्तों, पूरा भारत मना रहा है उनका जन्मदिन, अरिजीत सिंह साहब भी मना रहे हैं। और इनके बारे में अगर हम बातें करें आपसे, तो बहुत ही चर्चित, लोकप्रिय और सफल गायकों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी जादुई आवाज़ और सादा जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी सादगी, गहरा संगीत ज्ञान और सबसे बड़ी बात है, इतने सफल होने के बाद भी बड़े ही विनम्र होकर वो करोड़ों लोगों के दिलों की जान हैं, उन पर राज करते हैं। और शास्त्रीय संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं। 3 साल की उम्र में संगीत सीखना इन्होंने शुरू कर दिया और परिवार में इनकी माँ, नानी और मामा सभी संगीत से जुड़े हुए थे। और इनके बारे में हम आपको ये बता दें कि 2005 में केवल 18 साल की उम्र में वे रियलिटी शो फेम गुरुकुल में गए और इस शो में उनकी

गायकी को देखकर संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी फिल्म सांवरिया में गाने का मौका भी दिया था, लेकिन कुछ कारणों से वो गाना बाद में रिलीज नहीं हुआ। एक गाना जो है तुम ही हो, इस गाने ने लोग कहते हैं कि उनकी तकदीर बदल दी। 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 का ये गीत है तुम ही हो। ये गाना उन्हें रातों रात बॉलीवुड का सुपरस्टार बना देता है। आइए वही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि अरिजीत साहब की गायकी के शानदार सफर के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।

जी हाँ, इसी गीत के साथ, अरिजीत साहब के गाए हुए इसी प्यारे से गीत के साथ अब मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। जी हाँ, जिसका नाम है नमस्ते रोहतास।

0: कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला,

अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के

0: माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस,

0: एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं और लीजिए अब सुनिए देशभक्ति संगीत, और इसके बाद कुछ ही समय बाद पसंद आपकी पत्र आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे।

देश रंगीला। इस देशभक्ति गीत के बाद पसंद आपकी कार्यक्रम में हम एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम है और बहुत सारे पत्र आपके हम तक पहुंचे हैं, उन पत्रों को हम अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लेना चाहेंगे नरहन स्टेट ज़िला समस्तीपुर से ललन मिश्रा और नूतन मिश्रा जी का ये पत्र हमें मिला है। और साथ ही लिखते हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, डोंडी लोहारा बालोद से प्रभा रानी बेलदार, जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और राधा रानी जटोलिया, चंद्रनगर सहारनपुर से मनमोहन चुग मिट्टी चुग और खट्टी चुग, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज। तो लीजिए हम आपकी पसंद का ये गाना जो आपने लिखा है फिल्म इज्जत का, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं है, ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आइए सुनिए।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। इज्जत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर साहब ने इस गीत की रचना की और संगीत के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और दोस्तों, आपने जो हमें पत्र भेजे हैं उन पत्रों को लेने की बारी है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का पत्र हमें मिला है और ये हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमर खेड़।

महाराष्ट्र से अभिजीत गोहानकर राही श्रीमती सरिता गोहानकर, प्रिंस एकांश गोहानकर, बदलापुर मुंबई से लिखते हैं सिद्धांत गोहानकर, प्रणीता गोहानकर, अर्जुन गोहानकर, टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोहानकर, सुमित गोहानकर और कुमारी ध्वनि गोहानकर उर्फ परी का ये प्यारा सा पत्र आया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से लिखते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा जी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू बीके सुरगनैया और फुटानी चौक नरहन स्टेट से ही लिखते हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लालू पंडित। और ये पत्र आया है ताज मोहम्मद अंसारी साहब का, गुलाम साधिर साबिर राही और महराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से लिखते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा जी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू बीके सुरगनैया और फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से ही लिखते हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लालू पंडित। और ये पत्र आया है ताज मोहम्मद अंसारी साहब का, गुलाम साधिर साबिर राही और महराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये पत्र लिखा है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ के हमारे श्रोता, ताजपुर मोरवा से लिखते हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार वैरागी। तो लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का ये गाना है, बहुत प्यारा सा गाना है, मोहम्मद रफ़ी साहब की ही आवाज़ है और लता मंगेशकर की भी आवाज़ है। आइए सुनते हैं, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और मैं हूँ राजीव रंजन सिन्हा, आपका अपना दोस्त कहिए या रेडियो हम सफ़र कहिए। अगला जो पत्र मिला है वो है लुधियाना पंजाब से, लिखते हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फ़कीर, डब्लू उल्ला फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर, और बुलंदशहर से बदरू अली, माफ़ कीजिएगा, बदरू वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, इनका ये पत्र हमें मिला है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। अगले हमारे श्रोता हैं ईदगाह मोहल्ला डिहरी ऑनसुन से मोहम्मद जफर हुसैन साहब, फूलजहां परवीन, इंजीनियर करामत हुसैन और अरीबा, जेबा और रुखसार परवीन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा परवीन और बेबी अलीशा, ये हमें खत भेजते हैं पठान टोली कलेर बिहार से, पुराना शहर दाऊदनगर से सैयद सरफराज अहमद, खुर्शीद अहमद और राजेंद्र कुमार। तो लीजिए, हम आपकी पसंद का वो गीत आप तक पहुंचाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म वारिस से, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ है, आइए सुनते हैं।

और हमारे श्रोता हैं थाना मोड़ गढ़नुखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा हैं सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा लाल बाबू, सिमरन अली अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। कबीर रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत। डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया। शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा जी हैं, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा जी।

और इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से लिखते हैं भाई अच्छेलाल रॉय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार और नाज मंजिल से ये पत्र हमें मिला है महसौल सीतामढ़ी बिहार से। अकरम हुसैन प्रिंस, करीम अकरम, आरिफ वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। कतेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन जी का है। नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमज़ा बाबू और मुजम्मिल बाबू का भी ये पत्र हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भीरमगाम जंक्शन से अजीत कुमार जाटव, हेमा जाटव और प्रमिला जाटव, जेल रोड जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से लिखते हैं राजेश डॉली, महेश डॉली और रमेश डॉली, बुलंदशहर यूपी से फर्जी दया शंकर, ऐसा नाम क्यों रखा है आपने, और फर्जू हरिशंकर, लुधियाना से मंदी प्रभा कौर और तुषार पूजा कौर, फिल्म चंबल की कसम का गीत सुनना चाहते हैं। और अगला जो खत मिला है वो हमें मिला है राधे कुमार विद्यार्थी जी का, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से। सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन।

0: पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार, निराला जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है जी। आपने इतने सारे पत्र हम तक पहुंचाए और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपके पत्र ना छूटें। एक और पत्र है, वो भी हम शामिल करना चाहेंगे। श्री सुधाकर जी का है, बोरी खुर्द से इनका है ये पत्र आया है। डॉक्टर प्रशांत जी, जगुताई जी, साक्षीताई, संचित आरे गांव से लिखते हैं। प्रथमेश देशमुख मोताला, स्वामी देशमुख करहा और कुमारी प्रणाली देशमुख मोताका, सानवी देशमुख। तो अब हमें दीजिए इजाज़त इस प्रोग्राम को समाप्त करने की, जिसका नाम था पसंद आपकी, आपके ही पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
2: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे अशूरा के रूप

0: में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए के अनुसार उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। एनटीए ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किए जा सकते हैं। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले के परीक्षा केंद्रों पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम का नेतृत्व ईओयू के डीआईजी करेंगे। गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में अलग अलग मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा में बेगूसराय और नवादा में फर्जीवाड़े मामले की जांच भी ईओयू करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टर सिंह के अनुसार विभाग ने कार्रवाई से पहले उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सके थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है।

0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या बाहर स्थल अध्ययन पर जाने वाली सभी समितियों के साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई प्रखंडों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही इन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने बांका, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मुजफ्फरपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं, टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, अहमदाबाद और दानापुर बलसाड़ समेत 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक, बलसाड़ दानापुर स्पेशल 27 जुलाई तक और अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई तक चलेगी। इधर रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन शाम 5:41 पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों के शहादत की याद में यौमे अशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में दिए गए बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है

0: कि उनकी शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अरवल समेत विभिन्न जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में ताजिया जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारा तला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मुंगेर जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुंगेर भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मामले में गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला बेलफास्ट में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच से अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में वैभव टीम इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। उनकी उम्र अभी 15 साल 90 दिन है। भारत रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू, बिलौटी पहुंची आयोग की टीम ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हज 2027 16 साल बाद पटना एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन होगा, पहली बार सीधे जा सकेंगे जेद्दाह और मदीना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 188 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान गायब रहे पीएमसीएच के प्राचार्य को हटाया। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, एनसीईआरटी सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन जोड़ा गया, 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा। आज अखबार की प्रमुख खबर है, शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाश वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए प्रस्तुत है इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 9:10 पर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत मालिका। 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार।

खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 10:05 और भोजपुरी गीतों को सुनना चाहते हैं तो भोजपुरी एल्बम लोक गीत पर आधारित हमारा प्रोग्राम है लोक माधुरी, इसका लुत्फ लीजिएगा 10:30 पर। हम आपके लिए कुछ चुनिंदा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स भी लेकर हाजिर होंगे। कार्यक्रम होगा रसधार और इस कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे दिन में 11:45। ग्यारह बजे लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोक गीतों पर आधारित ये प्रोग्राम होगा। 11:25 पर विविध भारती के सौजन्य से कार्यक्रम रंग तरंग हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे 12:00 और यादों की महफिल विविध भारती की गीतमाला सुनिएगा 12:05 पर। हम अपने युवाओं के लिए युवा श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं रोजगार सूचना। आकाशवाणी के पटना केंद्र के सौजन्य से 2:10 पर आप सुनिए रोजगार सूचना। दो बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत हेलो सहेली और गीतों भरी कहानी।

अभी आप आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर।

अब हमारे स्टूडियो में समय हो चुका है 9:10 और ये वक्त होता है आपके लिए बेहद ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर होने का, गीत मालिका। जी हाँ, इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक नायाब और बेहतरीन गीतों को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं।

दोस्तों कहते हैं कि बरसात की हर बूंद में एक दास्तां मिली, बरसात की हर बूंद में दास्तां मिली, किसी को नई मंजिल किसी को पुरानी यादें मिली।

0: फिल्म संगीत पर आधारित इस प्रोग्राम जिसका नाम है गीत मालिका, अब बिल्कुल तहलका मचाता हुआ गीत आप तक पहुंचने वाला है, जिसे हमने लिया है फिल्म तहलका से ही। और अनु मलिक साहब, मोहम्मद अजीज़, सुदेश भोसले को आप सुनेंगे इस गीत में। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत की रचना की है, यानी रचनाकार हैं, और संगीत की धुन तैयार की है अनु मलिक साहब ने। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जो है सिर्फ आपके लिए।
1: आईला आईला

हम तो आपके लिए इन्हीं गीतों के माध्यम से बरसात की दुआ करते हैं कि खूब बारिश हो और गर्मी से राहत मिले, निजात मिले आपको। कहते हैं कि बारिश की बूंदों ने आज फिर ये पैगाम दिया, साथ हो अपना कोई तो हर मौसम खास हुआ।

0: भाग्य छल्ले दिखाए बिना लल्ला भाग्य रे।
1: आपने कभी किसी को बारिश से बचाया कि नहीं बचाया? बारिश की बूंदों में भी अपना ही नशा होता है। एक छतरी के बहाने दिलों का फासला कम होता है। अब अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गीत के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि बरसात की मस्ती से अब बढ़ते हैं जोश, उमंग और थिरकते सुरों की ओर। अब पेश है डिस्को दौर का एक ऐसा गीत जिसने देश ही नहीं दुनिया भर के श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया है। तो तैयार हो जाइए और ये गीत सुनिए।

और अब इस प्रोग्राम को संपन्न करने की दीजिए इजाज़त अपने दोस्त राजीव रंजन सिन्हा को। और दोस्तों, चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगा जनाब आपसे कि कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर पीढ़ी के दिलों में अपनी अलग जगह बनाए रखते हैं। ये वही गीत है, डिस्को डांसर मूवी का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे विविध भारती से और सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो राजा।

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैयाराजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैयाराजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक

दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैया राजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैया राजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैया राजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैया राजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैया राजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैया राजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैया राजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने

तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलियाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से

0: सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
3: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम

0: बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, लीजिए अब सुनिए खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। साप्ताहिक खेल गतिविधियां आप इसके अंतर्गत सुनेंगे। इस अंक के खेल के अंतर्गत एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। भेंट वार्ता शारीरिक शिक्षक एवं कोच शशि रंजन सिंह से होगी। संकलन एवं वाचन रजनीश कुमार श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।

नीट रन रेट 4.724। भारत खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले सुनते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें, उसके बाद बातें करते हैं एक विशेषज्ञ से। आज हम बातें करेंगे शशि रंजन से एथलेटिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों की सुर्खियों से। T20 विश्व कप, भारतीय महिला टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं। इंग्लैंड दौरे के लिए जूनियर महिला हॉकी टीम घोषित। जूनियर विश्व शूटिंग में वंशिका नरवाल को रजत। पाटिल मुंबई की सभी टीमों के मेंटर बने। सूर्यवंशी के लिए अलग चेंजिंग रूम। भारत ने श्रीलंका को हरा, अजय बढ़त ली। वनडे रैंकिंग, गिल ने 3 स्थान की छलांग लगाई। जर्मनी की निगाह जीत की हैट्रिक पर। अब दूसरे ग्रुप मुकाबले ने 1-0 से जीत दर्ज की। अब कोलंबिया के भिड़ंत आखिरी ग्रुप मैच में पुर्तगाल से होगी। हैरी केन के लगाम कस घाना ने इंग्लैंड को रोका। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। T20 विश्व कप महिला, भारतीय महिला टीम की T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कठिन हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद अब हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए अपने अंतिम दोनों मैच जीतने जरूरी हैं। एक जीत से

से अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। ग्रुप एक से पाकिस्तान और नीदरलैंड बाहर हो चुके हैं। अब चार टीमें दौड़ में, इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने चार जीत के साथ अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। टीम आठ अंकों के शीर्ष पर है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश में दूसरे स्थान के लिए टक्कर है। तीनों ही टीमों के एक समान चार अंक है। हालांकि नेट रन रेट में भारत दूसरे, दक्षिण अफ्रीका तीसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। ग्रुप ए की शेष चार टीमों की स्थिति इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया चार मैच चार जीते जीरो हारे आठ अंक, नेट रन रेट 4.724। भारत तीन मैच दो जीते एक हारे चार अंक 2.511 नेट रन रेट। दक्षिण अफ्रीका तीन मैच दो जीते एक हारे चार अंक -0.546 नेट रन रेट। बांग्लादेश तीन मैच दो जीते एक हारे चार अंक -0.64 अंक। यह थी महिला T20 विश्व कप की स्थिति। भारत ने श्रीलंका को हरा अजेय बढ़त ली। तनिष्का शर्मा 58 के अर्धशतक के बाद जहानवी वीरकर 14-4 और मैत्री मनियार 26-3 की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने बुधवार को अंडर 19 महिला T20 मुकाबले में श्रीलंका को 11 रन से हरा दिया। इस जीत से भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 134 रन बनाए, जवाब में श्रीलंकाई टीम 8 विकेट पर 123 रन ही बना पाई। जूनियर विश्व शूटिंग में वंशिका नरवाल को रजत। वंशिका चौधरी और शिव नरवाल की भारतीय जोड़ी ने जूनियर विश्व निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने 469.7 अंक हासिल किए और पोलैंड के मालगोजाटा डाबोस्का और इवान राकिस्की के बाद दूसरे स्थान पर रही। पोलैंड की जोड़ी ने 471.9 अंक के स्कोर के साथ स्वर्ण जीता। चीनी ताइपे के चेंग येंग चिंग और हिसे हियानसांग चिंग 410.0 अंक ने कांस्य हासिल किया। भारत तालिका में शीर्ष पर है। उसके कुल पदकों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें 5 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य शामिल है। प्रतियोगिता में 800 से अधिक निशानेबाज भाग ले रहे हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए जूनियर महिला हॉकी टीम घोषित। हॉकी इंडिया ने इंग्लैंड दौरे के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है। टीम 5 से 14 जुलाई 2026 तक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेंगी। कप्तानी खैदैम सिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंजिल हर्षा रानी मिन्स दो गोलकीपर होंगी। डिफेंस में पूजा साहू, सुप्रिया मधु, एफ लालबी अक्सियामी, लाल नेहपुई और पार्वती टोपटो हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिपा खान, गीता यादव, रोशनी आइंड और तनुश्री दिनेश काडू हैं। फॉरवर्ड में सुखवीर कौर, शशि खासा, लाल नेहपुई, निशा मिर्ज, पूर्णिमा यादव, काजल सानिका, चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा रहेंगी। पाटिल मुंबई की सभी टीमों के मेंटोर बने। भारत के पूर्व खिलाड़ी और कोच संदीप पाटिल को मुंबई क्रिकेट संघ ने बुधवार को 2026-27 सत्र के लिए मुंबई की सभी स्तरों की टीमों का मेंटर नियुक्त कर दिया। 1980 से 1986 के बीच 29 टेस्ट और 45 वनडे मैच खेल चुके पाटिल नई भूमिका में खिलाड़ियों के विकास, रणनीतिक प्रशिक्षण और प्रतिभा पहचान जैसे कार्यों में अहम योगदान देंगे। MCA ने 7 पूर्व महिला क्रिकेटर अरुंधति घोष को महिला टूर्नामेंट समन्वयक नियुक्त किया है। अरुंधति ने 8 टेस्ट और 11 वनडे मैच खेले हैं। MCA ने कहा, अरुंधति महिला टूर्नामेंटों, लीग चयन ट्रायल शिविर और विकास कार्यक्रमों की योजना और सुचारू संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। तो दोस्तों, यह थी सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित हमारी खबरें। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एथलेटिक्स के कोच शशि रंजन के पास। तो दोस्तों, यह थी सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एथलेटिक्स के कोच शशि रंजन सिंह के पास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर खेल की जननी एथलेट्स को माना जाता है, क्योंकि एथलेट्स में वो सारी चीज शामिल होते हैं जिसके जरिए हम किसी भी खेल को चुन सकते हैं। तो आइए आज हम बातें करने के लिए आपको

0: ये चलेंगे शशि रंजन सिंह के पास और उनसे हम जानेंगे एथलीट्स के बारे में, ये है क्या, इसमें कितने तरह के गेम होते हैं, इसके कितने प्रारूप हैं और इसे कैसे हम लोग खेलते हैं। शशि रंजन जी, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, धन्यवाद सर।
0: शशि जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये एथलीट्स है क्या।
1: देखिए सर, एथलेटिक्स को आपने पहले भी बोला कि सभी खेलों की जननी मानी जाती है। यह जमीन से जुड़ा हुआ खेल है जिसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव घर के या जहां भी जाएं वहां के बच्चे इस खेल को खेल सकते हैं और ये ज़िंदगी के बहुत बेसिक्स से रिलेटेड है। ज़िंदगी के बहुत बेसिक्स होता है दौड़ना, कूदना, भागना। एथलेटिक्स मेनली वही है, दौड़ना, कूदना, भागना, फेंकना, बस जो ज़िंदगी से के बेसिक से रिलेटेड है वही एथलेटिक्स।
0: एथलीट्स में कितनी तरह की विधाएं शामिल होती हैं?
1: सर ऐसे तो अगर आप बात करें एथलेटिक्स की तो हम लोग इसको मेनली दो भागों में बांट देते हैं। तो एक तो हो जाता है ट्रैक और एक हो जाता है फील्ड
0: जी।
1: तो दो तरह के हो जाते हैं।
0: कृपया दोनों के बारे में बताइए, दोनों है क्या।
1: देखिए ट्रैक जो होता है वो रनिंग से रिलेटेड है, जितनी रनिंग की एक्टिविटीज होती है ना वो ट्रैक पे होती है।
0: अच्छा।
1: हर फील्ड का ग्राउंड होता है ना,
0: अच्छा,
1: जहाँ पे खेला जाता है। वैसे ही ट्रैक में जो ट्रैक एंड फील्ड है, एथलेटिक्स को हम लोग ट्रैक एंड फील्ड भी बोलते हैं, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक ट्रैक होता है जिसमें रनिंग की जितनी भी विधाएं हैं सब होती हैं और दूसरा रनिंग के अलावा जितनी भी हैं
0: अच्छा
1: वो फील्ड में आती हैं, जैसे थ्रोइंग है, जंपिंग है।
0: वेरी गुड।
1: ये दोनों चीज़ें फील्ड्स में आती हैं।
0: रनिंग कितने तरह का होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कोई दौड़ा जा रहा है तो दौड़ा जा रहा है, इसका अंत कब है जानते ही नहीं, और कोई एक मिनट से भी कम सेकेंडों में ख़त्म हो गया। किसी को देखते हैं कि कोई उछलता हुआ, लकड़ी वकड़ी कुछ लगा होता है, हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है। कृपया आप उसके बारे में बताएं कि कितने तरह की रनिंग इसमें शामिल है।
1: देखिए रनिंग जो है उसको भी हम लोग कैटेगराइज कर देते
0: अच्छा।
1: हैं। एक हो जाता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस, दूसरा हो जाता है मिडिल डिस्टेंस और तीसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस को हम लोग स्प्रिंट इवेंट बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: जो कि 100 से लेकर 400 मीटर तक की विधाएँ होती है। उसके बाद मिडिल डिस्टेंस आता है जिसमें आप 800, 1500 कई, और लॉन्ग डिस्टेंस में 5 किलोमीटर और ऊपर की विधाएँ हैं। और ट्रैक में ही आपने बोला कि कहीं देखें कि उड़ते हुए भी जाते हैं, वो उसको हम लोग हर्डल्स कहते हैं।
0: अच्छा, हर्डल्स कहते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद वो और मैराथन सबसे टफ है।
1: देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इवेंट टफ
0: टफ है।
1: जो प्लेयर जिस इवेंट का है उसके लिए वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। अब उसेन बोल्ट का आप एग्जाम्पल लेंगे तो पूरे लाइफ में अपने लगभग 300 सेकेंड भागा है।
0: अच्छा।
1: सिर्फ 300 सेकेंड। हाँ। लगभग, मतलब मैं एक्यूरेट नहीं हो सकता हूँ, बट इसके आसपास। और उसने इन 300 सेकेंड्स के लिए अपने लाइफ के 30 सालों की मेहनत की। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैराथन बहुत टफ है और 100 मीटर बहुत ईजी है। सब अपनी अपनी जगह पे सही।
0: अच्छा, एक कोच होने के नाते अगर कोई बच्चा आपके पास आता है कि सर मैं 100 मीटर्स में हिस्सा लेना चाहता हूँ, और कोई आता है कि सर मैराथन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, आप दोनों लड़कों को कैसे तैयार करेंगे और दोनों के फिजिक में क्या अंतर होगा और कैसा होना चाहिए?
1: देखिए जब भी कोई भी कोच होता है, अगर उसके पास कोई भी नया टैलेंट आता है या नए बच्चे आते हैं तो वो सबसे पहले उनकी बेसिक्स को देखता है। कोई भी आके बोल देगा कि सर मैं 100 मीटर करूँगा, क्योंकि 100 मीटर थोड़ा ईजी पड़ता है, भागने के लिए कम रहता है, लेकिन वो देखता है कि इस बच्चे में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है। क्या ये बहुत ज़्यादा देर तक ग्राउंड में सस्टेन कर पा रहा है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ जाएगा, और किसी बच्चे में देखता है कि हाँ इसमें नेचुरल स्पीड ज़्यादा है, इसमें मैं इसको और बिल्ड कर सकता हूँ, इसकी बॉडी जो है वो भी सूटेबल है स्प्रिंट इवेंट, जो थोड़ी मस्कुलर होती है। और लॉन्ग डिस्टेंस में वो बच्चे सर्वाइव करते हैं जो जैसे ग्राउंड पे बहुत लंबे टाइम तक रनिंग नहीं, वो रनिंग करा के नहीं चेक करता है। एज अ मैं भी अगर कोच हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के चेक कर लेते हैं कि बच्चा कितना सस्टेन कर पा रहा है, इसका बॉडी फिगर कैसा है, इसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही एक कोच एक बच्चे को शेप करता है उसके इवेंट्स के लिए।
0: इसका मतलब कि 100 मीटर्स में मसल्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर मसल्स होगा तो ताकत उसके पास ज़्यादा होगी, और इस मसल्स वाले बच्चे को मैराथन में दौड़ना मुश्किल होगा।
1: हाँ ये बात कह सकते हैं, क्योंकि आपको 100 मीटर के स्प्रिंट में स्टोर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा साइंटिफिक बात करें

0: जी
1: लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो थोड़ा स्टोर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ से उसे सडन एनर्जी लेना पड़ता है 100 मीटर स्प्रिंट के लिए। और जो स्प्रिंट इवेंट्स होते हैं ये 100 मीटर,
0: जी
1: और जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उसमें जो हमारा एनर्जी का कंजप्शन होता है वो धीरे धीरे होता है।
0: अच्छा
1: तो इसमें एक व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का यूज़ होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो चीज़ें
0: नहीं,
1: बहुत बढ़ जाएंगी।
0: एक छोटे मोटे तौर पर
1: तो सर आपने जैसे पूछा था
0: जी
1: कि आप थोड़ा साइंटिफिक बताइए कि
0: जी
1: स्प्रिंट इवेंट्स और लॉन्ग
0: लॉन्ग
1: डिस्टेंस, तो दो तरह की मसल्स शरीर में पाई जाती
0: जी
1: हैं। एक होता है फास्ट ट्विच मसल्स,
0: जी
1: फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं मसल
0: जी जी
1: फाइबर्स, और एक होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। तो वो देखा जाता है कि जो एथलीट्स हैं स्प्रिंट इवेंट्स के,
0: जी
1: उनमें जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं,
0: ज्यादा होते हैं
1: और जो मैराथन वाले हैं उनमें स्लो ट्विच
0: स्लो।
1: ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से वो अपने आप को मतलब उस इवेंट में डालने की कोशिश करते हैं।
0: कोशिश शशि जी, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत नया सब्जेक्ट है, और जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी है, और जो ये सोचते होंगे कि हमारे बच्चे भी जाएं और वो खिलाड़ी भी, कि मैं भी जाऊं, उनके लिए तो बड़ा प्रेरणादायक है ये। क्यों नहीं थोड़ा मनोरंजन भी इस बीच कर लिया जाए। गाना वाना सुनना पसंद करते हैं आप?
1: बिल्कुल पसंद करते हैं।
0: तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का गाना मुझे बताएं, मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ और अपने श्रोताओं को भी सुनाता हूँ।
1: गाने की बात है तो एक गाना है आप अरिजीत सिंह का, नया गाना है,
0: जी जी
1: चल चल वे तू बंदे है उस गली है जहाँ कोई किसी को न जाने, बड़े दिल के करीब है मेरे ये गाना।
0: चलिए शशि जी, लीजिए मैं आपकी पसंद का गाना आपको भी सुनाता हूँ और अपने श्रोताओं को भी सुनाता हूँ।

0: हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं मैदान की तरफ, क्योंकि आपने बोला इसमें एक फील्ड होता है और एक ट्रैक होता है। मैदान में किस किस तरह के गेम होते हैं, सबका वन बाई वन नाम बताएं।
1: तो देखिए, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह के मेन इवेंट्स होते
0: जी जी
1: हैं, एक जो रनिंग से रिलेटेड जो ट्रैक पर होते हैं
0: जी
1: और एक होते हैं फील्ड पे, यानी जितने भी थ्रोइंग के इवेंट्स होते हैं, आप थ्रो करते हैं, जो चाहे आप शॉट पट को ले लीजिए, डिस्कस को ले लीजिए, ये सारे एक सेक्टर में होते हैं, इनका एक सेक्टर बना होता है और वहाँ से इनको थ्रो करना होता है। सब क्या एरिया स्पेसिफिकेशन वगैरह सब फिक्स है। आप थ्रो में जाइएगा तो आपको शॉट पट, डिस्कस, जेवलिन और हैमर, ये चार थ्रो के इवेंट्स मिलेंगे। उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, आप उन इक्विपमेंट्स को जितना दूर तक थ्रो करते हैं वो मापा जाता है, वो मेज़र किया जाता है, दैट इज़ योर रिजल्ट। दूसरे फील्ड में आते हैं जंपिंग के इवेंट्स,
0: जी
1: इसमें भी दो तीन तरह के हैं, एक वर्टिकल हाई वर्टिकल जंप है, एक हॉरिजेंटल जंप
0: जी
1: है, मतलब एक में लंबाई देखी जा रही है,
0: एक में ऊंचाई
1: एक में
0: देखी।
1: ऊंचाई देखी जा रही है। इसमें भी चार तरह के होते हैं, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, इन दोनों में लंबाई देखी जाती है।
0: ट्रिपल जंप क्या है?
1: ट्रिपल जंप एक लंबी जंप की तरह इवेंट है जिसमें तीन स्टेप में जंप को क्लियर
0: अच्छा,
1: करा
0: तीन
1: जाता
0: स्टेप
1: है,
0: में करना
1: तीन
0: है।
1: स्टेप में। उसमें वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट, नहीं तो
0: जी
1: राइट राइट लेफ्ट, ये वेरिएशन होता है। ये दो जो हैं वो इसको लंबा नापा जाता है, और दो होता है जिसको हम लोग मतलब वर्टिकली नापते हैं, जिसमें एक हाई जंप है और दूसरा है पोल वॉल्ट।
0: अच्छा,
1: पोल वॉल्ट जिसमें एक पोल का यूज़ करते हैं और पोल के सहारे एक हाइट को क्लियर करते
0: क्लियर
1: हैं।
0: करते
1: ये
0: हैं।
1: फील्ड इवेंट्स हो गए। बात करते हैं ट्रैक इवेंट्स की, तो ट्रैक इवेंट्स में जितनी भी दौड़ है, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर,
0: जी
1: 400 मीटर, ये 400 मीटर के एक स्पेशल ट्रैक पे होता है।
0: ट्रैक।
1: ये ऊपर से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फिक्स कर रखा है कि ये नॉर्मली स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का भी होता है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल है या इधर हम लोग 200 मीटर के ट्रैक पर भी इवेंट्स को करा लेते हैं। तो इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 5 किलोमीटर, इन सब की जो रनिंग होती है वो ट्रैक पर होती है। और सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ रनिंग्स होती हैं जो ट्रैक के बाहर भी होती हैं,
0: अच्छा
1: उसमें जैसे आपने मैराथन
0: जी
1: बोला,
0: जी
1: मैराथन ट्रैक पर नहीं, ट्रैक के बाहर होता है,
0: बात
1: और एक क्रॉस कंट्री होता है। क्रॉस कंट्री को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये
0: जी,
1: कि आप उसको एथलेटिक्स में
0: वो
1: ट्रैक
0: तो
1: एंड
0: है
1: फील्ड में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे,
0: बिल्कुल।
1: बट एक्चुअली है वो एथलेटिक्स का ही हिस्सा है।
0: अच्छा
1: क्रॉस कंट्री जिसमें अलग अलग सरफेस दिया जाता है वो ट्रैक के बाहर होती है, तो यही है अपना स्पेसिफिकेशन ट्रैक्स का।
0: मैं पुनः एक बार उसी प्रश्न पे आता हूँ जो पहले हमने किया। जैसे हम लोगों ने रनिंग के लिए बॉडी की ज़रूरत महसूस की कि मसल्स होना चाहिए, उसमें कम होना चाहिए, तो ये जो थ्रोइंग वाला है हमारा, विशेषकर थ्रोइंग में किस तरह के मसल्स की आवश्यकता होती है?
1: देखिए, थ्रोइंग जैसा ही आप नाम सुनते हैं, क्योंकि
0: जी
1: ज़्यादा दूर फेंकना है, तो इससे आप अपने आप क्लियर हो जाता है कि इसमें एक हैवी बॉडी की ज़रूरत होगी,
0: जी
1: क्योंकि थ्रोइंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है थ्रोइंग करने के लिए वो अपर बॉडी होती है। अब जैसे हैमर थ्रो है, आपने आप कभी देखिएगा हैमर थ्रोअर्स को, शॉट पुटर्स को, तो इनकी बॉडी ज़्यादा हैवी होती है। लेकिन एक थ्रो है जो जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो स्पीड और पावर दोनों
0: दोनों।
1: का खेल, उसमें अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी है तो भी वो सूटेबल नहीं है,
0: अच्छा
1: और बहुत ज़्यादा लीन है तो भी वो सूटेबल नहीं है, वो स्पीड प्लस पावर का मिक्सअप है। तो उसके लिए आपको एक बॉडी मतलब
0: मेंटेन करना होता
1: मेंटेन करना पड़ता है। थ्रो से अगर थ्रो है तो आपको एक हेवी बॉडी लगभग चाहिए होती है।
0: है। अभी भी यह देखा जा रहा है कि भारत खास करके एथलीट्स में बहुत आगे गया है। नीरज चोपड़ा इसके सबसे अच्छे इतिहास है जिसको हम लोगों की तो बना सकते हैं। अभी बिहार में भी बहुत अच्छा हो रहा है, आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ उपलब्धियां आई हैं। ये उपलब्धियां आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि अभी अभी जो इवेंट्स हुए उसमें क्या स्थिति रही है बिहार की और रोहतास की।
1: देखिए, एथलेटिक्स में तो अभी इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया में बिहार अच्छा कर रहा है, तो बिहार से ही अभी आपने रिसेंट ही पूछा है, तो मेरे साथ कहीं एक हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे, बट आज हम दोनों ने अलग अलग फील्ड चूज़ कर ली है, मैं थोड़ा शिक्षा के फील्ड में आ गया।
0: अच्छा,
1: वो अभी जस्ट जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है उसमें 3000 स्टीपल चेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने। उन्होंने पिछले साल भी ये मेडल जीता था, और इस साल तबीयत खराब होने के बाद भी

0: उन्होंने ये मेडल जीता है। वो विकास कुमार
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: हमारे पुराने फेलो हैं।
1: बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके मित्र को, तो पहले भी मिल चुका है, फिर पुनः दे रहा हूँ। और अभी जो स्थिति है वर्तमान में बिहार की, कैसी स्थिति है एथलीट्स में?
0: अभी की बात करें तो अभी खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर जो खुला है,
1: जी
0: जो पहले पटना चलता था, अभी राजगीर चल रहा है, उसके वजह से एथलेटिक्स में बिहार अच्छा करने की कोशिश कर रहा है।
1: कोशिश कर रहे हैं।
0: कोशिश ही नहीं कर रहा है, अच्छा कर भी रहा है। पिछले बार अभी जूनियर नेशनल जिस जो हुआ था, उसमें भी बिहार के बहुत सारे एथलीट्स ने मेडल लगाए हैं। यहाँ रोहतास में भी दो मेडल्स आए हैं। एक जैवलिन थ्रोअर हैं, उनका नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट
1: जी
0: वो
1: जी
0: तिलौथू की ही हैं,
1: जी जी
0: वो
1: हाँ
0: काफ़ी
1: हाँ
0: अच्छा कर रही हैं। निशी नाम है शायद
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और एक हमारे लॉन्ग जंपर भी हैं प्रदीप कुमार,
1: जी
0: रोहतास के ही हैं। तो अभी यूथ इंडिया खेलने गए, वो रोहतास के ही हैं और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वो। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार अच्छा कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी कि आपने हमें इतनी

0: वजह से एथलेटिक्स में बिहार अच्छा करने की कोशिश कर रहा है,
1: कोशिश कर रहे हैं
0: कोशिश ही नहीं कर रहा है, अच्छा कर भी रहा है। पिछले बार अभी जूनियर नेशनल जो हुआ था उसमें भी बिहार के बहुत सारे एथलीट्स ने मेडल लगाए हैं। रोहतास में भी दो मेडल्स हैं, एक जैवलिन थ्रोअर हैं, उनका नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट
1: जी
0: वो
1: जी
0: तिलौथू की ही हैं,
1: जी जी
0: वो
1: हाँ
0: काफ़ी
1: हाँ
0: अच्छा कर रही हैं, निशी नाम है शायद
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और एक हमारे लॉन्ग जंपर भी हैं प्रदीप कुमार,
1: जी
0: रोहतास के ही हैं, तो अभी यूथ इंडिया खेलने गए, वो रोहतास के ही हैं और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वो। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार अच्छा कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारे यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं स्वर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ साप्ताहिक खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी यहीं संपन्न होता है। आशा है खेल जगत की गतिविधियों, एथलेटिक्स पर विशेष जानकारी और शारीरिक शिक्षक शशि रंजन सिंह से हुई बातचीत आपको पसंद आई हुई होगी। स्वस्थ शरीर, सजग मन और खेल भावना, यही सफलता की सच्ची पहचान है। खेलते रहिए, फिट रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भोजपुरी एल्बम लोक गीतों पर आधारित प्रोग्राम लोक माधुरी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसधार। अब हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से सुनते हैं लोक माधुरी। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित इस प्रोग्राम में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत। गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी अब मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे विविध भारती से, कार्यक्रम होगा रंग तरंग।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार

0: देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल थे एसटी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलचन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोलते रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। जावेद अख्तर की बोली, अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी। इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमीं। ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए। दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो, लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओहो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए, बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है, ये बताइए।

येसुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की यह कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए, पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं, तो शुरू हो जाइए। किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंभात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल

मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल लिए और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो न जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झूम झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चक्री पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चक्री पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चक्री पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ, आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना, लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही है। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका

मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों से सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाई

भाईचारे का माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हालाकी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नवनियुक्त पीडीएस डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी,

0: में बीई अथवा बीटेक उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bsnl.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
5: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
4: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने

0: सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू

0: होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। में 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला

0: जिला की सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

पूरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठे तहिलो। अरे पुरुआ के झोंकवा में आई

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 70s

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम। श्रीला
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: सहनी दिल्ली से। हाँ,
0: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला जी?
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम,
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलना।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी

0: चल संकू
1: क्या बात है,
0: विविध
1: शुक्रिया
0: भारती की खास तौर पर।
1: जी
0: और
1: जी
0: मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ, और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
1: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
1: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप मैं कर रही हूँ अब
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
0: जी।
1: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप योगा करती हैं? योग से जुड़ी
0: जी
1: हुई हैं?
0: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
0: जी
1: के साथ
0: हाँ,
1: खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप, सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
0: जी
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या
1: जी,
0: हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी। आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी, गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, देवी जी के मंदिर

0: मांगी आई देवी जी के मंदिर में लट से आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना
0: कोई
1: चाहती हैं?
0: भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हम हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा

0: परिवार खुश रहता है और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प और हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प है

0: अच्छी बात आपने बताई, ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी।
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आम की एक फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है
1: और यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
1: जी
0: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का काम
1: जी
0: करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: हाँ
0: आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी।
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ, और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के, तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
1: या
0: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे
1: हाँ
0: मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए
1: जी
0: जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
1: हाँ
0: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जी,
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू?
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना ली भी, पर अब तो निश्चिंत जिंदगी है। जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी। मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है।

0: लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
0: हाँ
1: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
0: जी
1: बदौलत
0: जी
1: आप
0: जी
1: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
0: जी
1: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब
0: जी
1: हम योग
0: बिल्कुल
1: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने

उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, वह हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इंद्रप्रस्थ चैनल है, शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
3: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति

0: एसआईटी का गठन किया, बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भोजपुरी गीते, बेहतरीन भक्ति गीते। कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीते। कलाकार होंगे प्रेमरंजन सिंह,

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, महिलाएं उद्योग कैसे करें, इस विषय पर आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर उषा पांडे। शाम 6:40 पर हम लेकर आएंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीत। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से, इसके अंतर्गत हम आपको कैमूर और रोहतास जिले की आज की गतिविधियों के बारे में बताएंगे।

शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा।

9:15 पर आप सुनेंगे मनकबत एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम बंदगी। 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प।

का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। रात्रि 10:30 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद यानी 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भक्ति गीतों का, और कार्यक्रम है वंदन कार्यक्रम का। पहला भक्ति गीत हमने लिया है केशव शर्मा की खूबसूरत आवाज़ में।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परूणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था। रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत अनूप

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: कार्यक्रम का अगला और अंतिम भक्ति गीत हरिराम पटेल की आवाज में।

तो श्रोताओं, हरिराम पटेल द्वारा गाए इसी बेहतरीन भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को रीभा का प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज हम नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवन जागरूकता दिवस पर बात करेंगे। कैसे नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए हानिकारक है। वहीं पाक कला में तीसी से बनने वाले कुछ व्यंजन के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम के बीच बीच में गीत संगीत का आनंद लेंगे। नसीहत में फिजूल खर्चा से कैसे बचें, इस पे भी कुछ बातें होंगी। सखियों, नशे की लत कोई भी हो हानिकारक है, व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए। इसके प्रभाव से पारिवारिक रिश्ते टूटते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वहीं मानसिक स्तर पर अपराध, आर्थिक बर्बादी और युवाओं की कार्यक्षमता का ह्रास भी होता है। नशे की लत पूरी करने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी और घर तक बेच देते हैं, जिससे परिवार कर्ज में डूब जाता है। वहीं नशे की जिसे आदत होती है वह घर परिवार में भी दुर्व्यवहार और कलह करते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होता है। माता पिता में से किसी को भी अगर नशे की आदत है तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। कई बार बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाल श्रम या अपराध की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा होता है जहां कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। नशा करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे इलाज का खर्च बढ़ता है और परिवार को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। नशे की लत को पूरा करने के लिए लोग चोरी, छीना झपटी, हत्या जैसे अपराधों का भी रास्ता चुन लेते हैं। समाज में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। नशे के कारण युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक जाती है। नशे की हालत में वाहन चलाने से हर साल बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। कार्यस्थलों पर नशे के प्रभाव के कारण युवाओं की कार्यक्षमता और एकाग्रता कम होती है, जो देश और समाज की आर्थिक प्रगति में बाधक है। नशे से रिश्तों में मनमुटाव भी बढ़ जाता है। भावनात्मक कष्ट, भरोसे की कमी और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार परिवार

से टूट जाते हैं, शादियां भी टूट जाती हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अवनति की ओर ले जाता है। सखियों, आप सब जानती होंगी कि प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से के प्रति जागरूक करना और समाज को एक स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। नशा करने से तनाव बढ़ता है, याददाश्त कमज़ोर होने जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शराब, तंबाकू, ड्रग्स के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और यकृत की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नशा व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है, जिससे पूरे परिवार प्रभावित होते हैं। नशे की लत से बचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर

शराब, तंबाकू, ड्रग्स के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और यकृत की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नशा व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है, जिससे पूरे परिवार प्रभावित होते हैं। नशे की लत से बचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर हम उचित खान पान को अपनाकर अपना मन कहीं और लगाकर इससे बच सकते हैं। मन को व्यस्त रखिए, स्वयं को स्वस्थ रखिए और नशे से मुक्त रहिए। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और अपनी काउंसलिंग भी कराएं। तो आइए सखियों के साथ अभी एक गीत सुनते हैं।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
5: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
4: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
6: सखियों, आइए अब पाक कला की ओर चलते हैं। तीसी अलसी से मुख्य रूप से सेहतमंद और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। बिहार और झारखंड में इसके लिए इसके कई लोकप्रिय व्यंजन बनते हैं। तीसी की चटनी, तीसी का पीठा, गुड़ और तीसी को मिलाकर इसे भरते हैं, स्टफिंग तैयार करते हैं। तीसी के लड्डू और तीसी भात भी बनाया जाता है। उबलते हुए चावल के साथ तीसी का पाउडर मिलाकर इसे बनाते हैं। तीसी की चटनी, इसे सूखी मिर्च और लहसुन मिर्च के साथ पीसकर बनाया जाता है। बिहार और झारखंड में इसे सरसों के तेल के साथ बहुत पसंद किया जाता है। तीसी बरी की बात करें तो पीसे हुए चावल के आटे में तीसी का पाउडर, नमक और मसाले मिलाकर छोटी छोटी बरियां बनाई जाती हैं, जिन्हें सुखाकर बाद में सब्जी के रूप में पकाया जाता है। तीसी का पीठा, चावल के आटे की लोई में भुनी हुई तीसी और गुड़ का मिश्रण भरकर इसे भाप से पकाया जाता है। यह पीठा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, वहीं यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तिसियोरी की बात करें तो यह हर घर में बनाया जाता है। इसके लिए चने या मसूर की दाल के पेस्ट में भुनी हुई तीसी और मसाले मिलाकर छोटी छोटी बरी बनाई जाती है। इसके बाद में छान कर भी दाल चावल के साथ इसे खाया जाता है। इससे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। तीसी के लड्डू सर्दियों के मौसम में प्रायः सभी घरों में बनाए जाते हैं। इसके लिए तीसी को भूनकर पाउडर बना लिया जाता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स, गुड़ की चाशनी और थोड़ा सा सोट गोंद मिलाकर छोटे छोटे लड्डू तैयार किए जाते हैं। यह लड्डू सर्दियों में बहुत पसंद किए जाते हैं। अलसी का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह ओमेगा-3 फैटी एसिड फाइबर का स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य से लेकर वजन नियंत्रण करने और कब्ज दूर करने में मदद करता है।

इसके पोषक तत्व त्वचा में चमक लाते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। तीसी का उपयोग हमें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व हमें भोजन के माध्यम से मिले। तो आइए अब सखियों के साथ एक गीत सुनते हैं।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहां उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: सखियों, आइए चर्चा की ओर चलते हैं। फिजूल खर्च से बचने के लिए सबसे पहले अपनी कमाई और खर्चों का लिखित बजट बनाएं। जरूरत और इच्छा में अंतर को समझें और खरीदारी जब भी करने जाएं तो लिस्ट के साथ जाएं। कई बार हम बाज़ार में बिना लिस्ट के चले जाते हैं और वहां से ऐसी चीज़ों को भी खरीद कर लाते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, या यूं कहें कि उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। जब हम अपनी कमाई के हिस्से को खर्च करते हैं तो ज़रा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अपनी आय को देखें और उसमें से अनिवार्य खर्च जैसे किराया, EMI, राशन के लिए सबसे पहले पैसा निकालें, फिर बच्चों की फीस, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। यदि कोई महंगी और गैर जरूरी चीज़ पसंद आए तो उसे तुरंत खरीदने से बचें। 30 दिन का समय लें। अगर 30 दिन बाद भी उसकी उतनी ही ज़रूरत महसूस हो तभी खरीदें। ज़रूरत और इच्छा के बीच फर्क समझें। आवश्यक चीज़ें, भोजन, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, इच्छाएं तो अनंत होती हैं। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और बार बार बाहर डिनर करना, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। सुपरमार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाने से पहले अपनी ज़रूरत की लिस्ट बनाएं। वहीं खरीदें जिसकी ज़रूरत हो। 50-30-20 नियम अपनाएं। अपनी कमाई का 50 ज़रूरत पे, 30 शौक पे और 20% बचत पे खर्च करें। तो आइए बहनों, अब एक और गीत सुनते हैं।

कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। सखियों, आप सब्जों से विदा लेने का समय हो गया है, तो अपनी सखी रिभा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

में अभी आप सुन रहे थे लोकगीते एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केन्द्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। गृह मंत्री अमित शाह आजू नशा के खिलाफ इकट्ठा होके लड़े के गुहार कैले आ कहले कि नशीला पदार्थ के कारोबार देश के सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हित आ जवानन के भविष्य खातिर खतरा बा। उन्हें आध्यात्मिक नेता जुआ आ माई लोगन से ई अभियान में मिलल जुल के भाग लेवे की अपील कैलन। श्री शाह ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD के 10वें शीर्ष स्तरीय बैठक के संबोधित करत कहलन। गृहमंत्री कहलन कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीला पदार्थ से जुड़ल अपराध के जानकारी समय पर साझा करे खातिर कईन गो ऑनलाइन पोर्टल शुरू कैले बा। वहाँ सब राज्यन के मुख्य सचिव आ पुलिस महानिदेशक लोगन से इन्हन पोर्टल पर नशा से जुड़ल मामला के जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करे खातिर कहलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार 28 जून की आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोगन से अपन विचार साझा करिहन। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी या दूरदर्शन के सब चैनलन पर, AIR न्यूज के वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाय। संगे संग AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना आ प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी एकर सीधा प्रसारण हुई। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन आ जवाबदेही के बढ़ावा देवे खातिर आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक भइल। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के अध्यक्षता में भइल बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हाजिर रहलन। बैठक में सभी विश्वविद्यालयन में यही साल 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सब मॉड्यूल लागू करे के निर्देश दिहल गइल बा। यही दौरान नया बनल 211 गो सरकारी डिग्री कॉलेजन में सहायक प्राध्यापक लोगन के केंद्रीकृत बहाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमन से लागू करे, रिसर्च आ डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देवे पर बात भइल। बैठक में विद्यार्थी लोगन के रुकल डिग्री बांटे के काम 30 सितंबर तक पूरा करे के निर्देश दिहल गइल। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि प्रदेश में मास्टर लोगन के ट्रांसफर के लेके सरकार गंभीर बिया। श्री तिवारी पटना में संवाददाता लोगन से बातचीत में कहले कि सरकार ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च कैले बा जेकरा से मास्टर लोगन के ट्रांसफर कैल आसान, पारदर्शिता आ भ्रष्टाचार से मुक्त होई। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामला में कहले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एकरा पे कड़ी सुनवाई शुरू कर दी हले बाड़न। श्री झाज पटना में संवाददाता लोगन से बातचीत में कहलन कि NDA सरकार राज्य में कानून आ व्यवस्था के मजबूत रखे खातिर पूरी तरह से तैयार बा। आज मुहर्रम के 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन आ 72 गो साथी लोगन के शहादत के याद में योम ए आशूरा मनावल जा रहा बा। ए मौका पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सन में ताजिया आ मातमी जुलूस निकालल जा रहा बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया संदेश में कहलन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच आ न्याय के रास्ता पे अड़िग रहे के सिख देवेला। राज्यपाल सैयद अता हसनैन प्रदेश के लोगन से पुराना भाईचारा, शांति आ सदीक्षा के माहौल में मुहर्रम मनावे की अपील कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन कि हजरत इमाम हुसैन के शहादत हमनी के इंसानियत, त्याग आ सद्भाव के रास्ता पे चले के प्रेरणा देवेला। इन्हें मुहर्रम के लेके पूरा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनैले रखे खातिर सुरक्षा के बढ़न इंतजाम कैल गइल बा। पुलिस प्रशासन सब थानन के जुलूस वाला रास्ता पे सुरक्षा बढ़ावे के निर्देश देले बा। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुरा, पटना सिटी समेत 351 गो जगहन पर मजिस्ट्रेट के देखरेख में पुलिस बल तैनात कैल गइल बा। पटना समेत दक्षिण बिहार के कईन गो जिलन में बरखा भारी से लोगन की उमस आ चिलचिलात गर्मी से थोड़ी राहत मिलल बा। पिछला 24 घंटा में शिवहर, मधुबनी आ पश्चिम चंपारण के कुछ एक जगहन पर भारी बरखा भइल बा। मौसम विभाग के मुताबिक शिवहर में सबसे ज्यादा 112.4 मिलीमीटर

0: भइल बा। विभाग कहले बा कि अगला 3-4 दिन में बिहार के बाकी हिस्सन में भी मॉनसून के आगे बढ़े खातिर माहौल निक लागत बा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद मॉडल सदर अस्पताल में बनल रहल आईसीयू के जांच कैलन। 4 बेड वाला अत्याधुनिक आईसीयू के 30 जून तक शुरू करे के लक्ष्य रखल गइल बा। सासाराम डेहरी प्रखंड के 86 गांवन के बिहार के 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेहरी में बसावल जाई। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलला के बाद यह महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चौड़ी सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल आ कारोबार खातिर अलग से व्यवसायिक इलाका विकसित कैल जाय। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन की तरफ से प्रणाम। श्रोता भाई देखी, आदरा नक्षत्र चल रहल बा, चार दिन से नक्षत्र शुरू बा, लेकिन अबहिन तक बारिश एको दिन ना भइल। किसान भाई लोग टकटकी लगा के आसमान की ओर देखत रहन, बादल छावता तो आदमी के मन में खुशी दौड़ता, लेकिन फिर बादल मतलब धूप उग जाता, बारिश नहीं होत। देखी बहुत किसान लोग रोहिणी नक्षत्र में बिचड़ा डलले रहन, जौन की तैयार भी हो गई बा, इंतजार करता कि बारिश हुई तो रोपनी हुई, लेकिन बहुत किसान लोग देखी आदरा नक्षत्र में बीज डाले लन, जौना के कभी बारिश के इंतजार लोग कर रहल बा। तो देखी अब हमनी के चल जाओ अपना कार्यक्रम के तरफ, कि हमनी के कार्यक्रम में आज का का जानकारी मिले वाला बा। तो श्रोता भाई, सबसे पहले हमनी के जानल जाए कि सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम से गाँव के विकास हुई। 27 जून सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम विकास दिवस है। एकरा बाद हमनी के मनोरंजन ओझा से गीत गौने के आनंद लिहल जाई। एकरा बाद एगो वार्ता के माध्यम से जानल जाए कि महिला लोग उद्योग कैसे करस, वार्ताकार रहब उषा पांडे। आ एक जानकारी में जानल जाए कि नशीला दवाई के दुरुपयोग आ तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ मुहर्रम पर भी हमनी के बातचीत कैल जाए। आ चलत चलत एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर भी डालल जाए। ती तरह हमनी के कार्यक्रम के एगो छोटा झलक। अब हमनी के बात कैल जाए कि सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम से गाँव के कैसे विकास होई। तो श्रोता भाई, सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम जौन बाटे ग्रामीण भारत के अर्थव्यवस्था के ई रीढ़ है। आ ई कम पूंजी में स्थानीय स्तर पर बड़ा पैमाना पर रोजगार पैदा करला, पलायन रोकेला आ महिला लोग के सशक्त बनावेला। स्थानीय संसाधन के सही उपयोग करके गाँव के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेला। आ देखी जैसे रोजगार सृजन जौन बाटे, खेती के बाद ग्रामीण भारत में MSME सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण आ हस्तशिल्प जैसन छोटा उद्योग बाटे ये ग्रामीण युवा महिला के स्वरोजगार प्रदान करेला। स्थानीय संसाधन के उपयोग जौन बाटे, गाँवन में उपलब्ध कृषि उपज, बाँस, मिट्टी आ ऊन जैसे कच्चे माल के उपयोग करके स्थानीय स्तर पर ही उत्पाद तैयार कल जाला। एकरा से परिवहन लागत बचेला आ किसान लोग के उनका उपज के बेहतर दाम मिलेला। अच्छा, आ पलायन पर रोक इस तरह से होला कि जब गांव में ही लोगन के उचित आय आ रोजगार मिले लगी आ व्यवसाय के अवसर मिले लगी तो शहर में होखे वाला पलायन जौन बाटे वो कम हो जाए। काहे कि कमाए खातिर ही बाहर जातन। गांव में धन के संचार हो जौना से प्रति व्यक्ति आय के बाय बढ़ी आ गरीबी उन्मूलन में सहायता मिली। सरकार द्वारा गाँव में कई छोटा उद्योगन के बढ़ावा देवे खातिर कई योजना चलावल जा रहा बा आ जेकर लाभ रुआ उठा सकेला। जिससे एक तहत नया सूक्ष्म उद्योग जौन बाटे विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक आ सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक के लागत स्थापित करे खातिर बैंक ऋण पर 15% से 35% तक सब्सिडी।

प्रदान कैल जा रहल बा। छोटा व्यवसायन के बिना कोनो गारंटी के 10 लाख तक के ऋण प्रदान कैल जाता। एकरा के शिशु 50 हज़ार तक के किशोर और 5 लाख तक के श्रेणियन में बांटल जाता। आ देखिए एकरा बाद पारंपरिक उद्योगन के आधुनिकीकरण आ गाँवन में नवाचार के बढ़ावा देवे खातिर सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता तकनीकी मार्गदर्शन कैल जाता। रउरा अपना गाँव में ही व्यवसाय शुरू कर सकेला। आ कौनो व्यवसाय शुरू करे खातिर योजना बनाव तनी तो रउआ कौन व्यवसाय शुरू करतनी यह बात के जानकारी देवे के होई। देखिए हर वर्ष 27 जून के सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम जन बाटे दिवस मनावल जाला। ये दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था सतत विकास में MSME के महत्वपूर्ण भूमिका के पहचाने ओकरा के प्रोत्साहित करे खातिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में घोषित कैल गई रहे। आर्थिक रीढ़ जौन बाटे वैश्विक स्तर पर ही उद्योग कुल व्यवसाय के लगभग 90% रोजगार के 60% से 70% आ वैश्विक GDP के 50% हिस्सा बनेला। एकर स्थानीय रोजगार जौन बाटे नवाचार भारत के स्थानीय समुदाय विशेषकर बिहार जैसा राज्यन में ये छोटा मध्यम व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करे नवाचार के बढ़ावा देवे के प्रमुख केंद्र ह। एकरा में भारत में 7.4 करोड़ से अधिक जौन बढ़न 32 करोड़ से ज़्यादा लोग के रोजगार प्रदान करेला। भारत के कुल निर्यात में ये लगभग 48.6% के योगदान करेला। आ देखी यदि रउरा अपना व्यवसाय शुरू करते हैं विस्तार क के पहली करा के सरकारी लाभ रउरा जरूर उठाई। अपना व्यवसाय के MSME के तहत अपना व्यवसाय रजिस्टर करे के आधिकारिक पोर्टल उद्यम रजिस्ट्रेशन जौन पोर्टल बा ओकरा पर उड़ा रजिस्ट्रेशन कर सकेला। रोजगार सृजन कार्यक्रम जौना के माध्यम से भी निर्माण और सेवा के क्षेत्र खातिर क्रेडिट लिंक आ सब्सिडी प्राप्त कैल जा सकेला। आ एकरा खातिर मुद्रा लोन भी मिलता। सूक्ष्म लघु उद्यम खातिर 10 लाख तक के आसान ऋण प्राप्त करे के योजना भी रउरा बाटे। इस रउआ ये अपन रोजगार शुरू कर सकेला। तो देखिए अभी हमनी के बात करते रह जा। अब हमनी के तनी चलल जाओ गीत गौनाई के दुनिया में आ तनी मनोरंजन ओझा से लोकगीत के आनंद लिहल जाओ।

0: देखी अभी हमने के गीत गौनाई के आनंद लेते रही जा, कलाकार रही मनोरंजन ओझा, बड़ा बढ़िया गीत सुनैनी कि पिया गेले परदेश फाटेला छतिया हमार। इतना बढ़िया गीत सुनैला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई, हमने के एगो वार्ता के माध्यम से जानल जाई कि महिला उद्योग कैसे करस महिला लोग, तो एक वार्ताकार बानी उषा पांडे, तो हमने के जानल जाओ कि वहाँ से कि मतलब महिला लोग के उद्योग कैसे करे के चाहिए।
1: महिलाएं उद्योग कैसे लगाएं, यह विचारणीय प्रश्न है। उद्योग लगाकर अपना आर्थिक उन्नयन महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामुदायिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाना एक गंभीर समस्या है। आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों पर निर्भर करती है। चूँकि महिलाएं देश में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः यह महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी के बिना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर नीतियों का निर्माण किया, संस्थागत प्रणालियों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत की और महिलाएं इसको प्राप्त कर अपना विकास कर रही हैं, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में आज भी उनकी प्रतिशतता कम है। यद्यपि सरकार सब तरफ से चौतरफा महिलाओं की स्थिति सुधारने के जुगत में लगी है, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए खुला है, फिर भी उद्योग की तरफ महिलाओं का ध्यान कम है, नौकरी की तरफ ज़्यादा। नई पंचायती राज व्यवस्था ने चौतरफा महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकलने, समाज में बोलने का अधिकार प्रदान किया है। उद्योग धंधा प्रारंभ करने का क्षेत्र भी महिलाओं के लिए खुला हुआ है। यदि हम आप शिक्षित हैं, उद्योग लगाना चाहती हैं, तो कुछ जानकारी आपको हासिल करनी

होगी। उद्योग लगाकर हम अपना विकास कैसे कर सकती हैं? लघु उद्योग के माध्यम से ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र की महिलाएं व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपना उद्योग कर सकती हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर छोटी छोटी बचत कर तथा आपस में लोन लेकर एवं बैंकों में समूह खाता खुलवाकर उद्योग लगा सकती हैं। छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ किए जा सकते हैं। कुछ संस्थान लघु उद्योगों के विकास हेतु बनाए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सहूलियतें उन्हें प्रदान करते हैं। किस संस्थान से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है उनकी एक छोटी जानकारी हासिल करनी होगी। पहला है लघु उद्योग विकास संगठन, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसका मुख्य कार्य लघु उद्योग के विकास हेतु नीतियां तैयार करना है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रदेशों में चल रहे औद्योगिक विकास एवं उनसे संबंधित संस्थानों के मध्य समन्वय रखता है। इसके अंतर्गत 17 लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रमुख स्थानों पर उनकी शाखाएं एवं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र तथा उत्पाद केंद्र है। इसका मुख्य कार्य नए एवं पुराने उद्योगों का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य हैं: उन उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना जो लघु उद्योग के रूप में लगाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की निर्माण प्रक्रिया व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना एवं उचित परामर्श देना, सामान्य एवं विशेष सुविधाएं प्रदान करना, तकनीकी जानकारी एवं प्रबंध से संबंधित प्रशिक्षण देना, आर्थिक सुविधाएं एवं तकनीकी जानकारी जुटाना, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास में सहायता देना, मशीनें खरीदने के लिए परामर्श एवं अन्य सुविधाएं, सरकारी विपणन में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन। दूसरा संस्थान है उद्योग निर्देशालय। अगर आप उद्योग लगाना चाहती हैं तो इनके द्वारा स्थापित विभिन्न जिलों के उद्योग केंद्रों में पंजीकरण, कच्चे पक्के माल का आवंटन, भूमि भवन एवं मशीनरी का प्रबंध तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्यों की जानकारी रखनी होगी। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ उद्योग निर्देशालय अपने जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कच्चे माल एवं मशीनरी के समुचित उपयोग पर कड़ी निगरानी रखता है ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। अपने प्रदेश में औद्योगिक संस्थान स्थापित करना उनके विकास हेतु प्रयास एवं जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन करना भी इसका प्रमुख कार्य है। पक्के माल की बिक्री के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने हेतु इम्पोरियम या अन्य कई इस प्रकार की एजेंसीज खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आयोजित मेला एवं प्रदर्शनी में भी भाग लेकर सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार के खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर बिक्री का मौका देना भी इसके विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है। इस प्रकार देखने में आया है कि उद्योग निर्देशालय द्वारा विभिन्न प्रकार की लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः औद्योगिक विकास से इस संस्था का महत्व काफ़ी अधिक है। महिलाओं को उद्योग लगाने से पूर्व उद्योग निर्देशालय से आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना उनके उद्योग स्थापना में सहूलियत स्थापित कराएगा।

या यूं कह सकते हैं कि इस संस्था की सहायता से सारी जानकारी एवं सुविधाएं प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश में एक उद्योग निर्देशालय है जो कि उद्योग निदेशक के संचालन में कार्य करता है। इसका कार्य संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक कार्यों का संचालन करता है। तीसरा संस्थान है लघु उद्योग सेवा संस्थान। उद्योग स्थापना की आकांक्षी महिलाओं को थोड़ी जानकारी लघु उद्योग सेवा संस्थान के बारे में रखनी होगी। लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। असलियत में विकास संगठन अपनी इन्हीं सेवा संस्थानों के माध्यम से औद्योगिक विकास कार्य का संचालन करते हैं। यह लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रत्येक प्रदेश में स्थापित है। इसके अतिरिक्त प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनकी उप संस्थान शाखाएँ खोली गई हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना लघु उद्योग के विकास में प्रगति लाने तथा उद्यमी को विशेष प्रकार की सुविधाएं देने के विचार से ही की गई है। इसका प्रयोजन उन्नत प्रबंधकीय एवं तकनीकी विषयों पर जानकारी को उपलब्ध कराना है। लघु उद्योगों को बुनियादी तौर पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह इनको दूर करने में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त ये कुछ कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। आदर्श योजनाएं, डिजाइन, नक्शे एवं तकनीकी पुस्तकों तथा मैगजीन तैयार करना, आर्थिक अन्वेषण करना इसका कार्य है, तकनीकी परामर्श एवं विकसित निर्माण विधियों का प्रदर्शन करना, विभिन्न सर्वेक्षण करना, प्रबंध एवं उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिए स्वीकृत संयंत्र अध्ययन की व्यवस्था करना, छठा कच्चे माल का सही उपयोग, मशीनों के प्रकार एवं बनावट में सुधार एवं अनुसंधान कार्य है। चौथा संस्थान है राज्य लघु उद्योग निगम। विभिन्न राज्यों में विशेष कार्यों हेतु लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। पांचवा संस्थान है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों को उनके द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद के कार्यक्रम में सहायता करना था, परंतु अब इस निगम की मशीनरी एवं उपकरण को किराया खरीद आधार पर लघु उद्योगों को उपलब्ध कराना है। यह कार्य लघु उद्योग निगम उद्योग निर्देशालय की सम्मति एवं स्वीकृति के आधार पर ही किया जाता है। छठा संस्थान है राज्यों के वित्तीय निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। लगभग सभी प्रदेशों में वित्तीय निगमों की स्थापना की गई है। इन वित्तीय निगमों का कार्य लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों को औद्योगिक कार्य हेतु ऋण उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है। यह संस्थान केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार करता है जो इकाई उद्योग निर्देशालय से पंजीकृत होता है। इन निगमों से ऋण प्राप्त करने के लिए इनका अपना बना हुआ फार्म भरकर फार्म की फीस के साथ जमा करना पड़ता है, जिसको निगम के तकनीकी अधिकारी पूर्ण रूप से अध्ययन करके ऋण मंजूर करते हैं। इसके अतिरिक्त यह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सहायक है, परंतु इसका मुख्य कार्य ऋण की सुविधा उचित ब्याज दर पर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त भी यह बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। उपर्युक्त तथ्यों से

स्पष्ट है कि उद्योग लगाने की इच्छुक महिलाओं को 5-6 बातों पर गौर करना होगा। पहला, पंजीयन कहाँ कराएं? उत्पाद क्या होगा? उत्पाद की तकनीक कहाँ से हासिल होगी? कच्चा माल कहाँ उपलब्ध होगा? 5, मशीनरी कहाँ से प्राप्त होगी? 6, विपणन की व्यवस्था कैसी होगी? गुणवत्ता नियंत्रण की क्या विधियाँ होगी? उद्योगों की प्रकृति कैसी है? इसकी विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, जैसे सौंदर्य

0: पांचवा, मशीनरी कहाँ से प्राप्त होगी? छठा, विपणन की व्यवस्था कैसी होगी? गुणवत्ता नियंत्रण की क्या विधियाँ होगी? उद्योगों की प्रकृति कैसी है? इसकी विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, जैसे सौंदर्य वर्धक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग, कृषि उत्पाद, खिलौना उद्योग? इन छोटी छोटी बातों की जानकारी लेकर महिलाएं अपना उद्योग लगा सकती हैं तथा अपना आर्थिक उन्नयन कर सकती हैं।
1: देखिए श्रोता भाई, अभी हमने के एगो वार्ता के माध्यम से सुनत रह जाए कि महिला लोग उद्योग कैसे कर से, तो देखिए यह विषय पर उषा पांडे बड़ा बढ़िया जानकारी देनी कि मतलब हर प्रदेश में एकर संस्थान बा, महिला लोग बड़ा छोटा जैसे भी उद्योग कैल चाह तड़ी उ अपन सहयोग ओकरा में मांग सकेली संस्थान से, आ ओकरा के रजिस्ट्रेशन करवा के जहाँ से रहल चाह तड़ी जौना चीज में कल चाह तड़ी आ उनका के सब्सिडी भी मिली उ कर सकेली। महिला भी आत्मनिर्भर बाड़ी, कोई पर निर्भर नहीं की। तो देखी इतना बढ़िया जानकारी देला खातिर उषा पांडे के बहुत बहुत धन्यवाद। आ श्रोता भाई, हमने के बातचीत आगे कल जाए लेकिन पहले कुछ संदेश सुन लेवे के।
2: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पाख।
3: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
2: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
3: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
2: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
3: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
1: श्रोता भाई, हर साल 26 जून के नशीली दवावन के दुरुपयोग अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला। यह दिन के मनावे के मुख्य उद्देश्य बाटे लोगन के मादक पदार्थन के लत से होखे वाला खतरा ओकरा गैर कानूनी व्यापार के बारे में जागरूक कइल। एकर शुरुआत जौन बा संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 दिसंबर 1987 के एगो प्रस्ताव पारित करके हर साल 26 जून के दिवस के मनावे के निर्णय लेले रहे। आ देखी, नशा मुक्त समाज के लक्ष्य के प्राप्त करे के वैश्विक स्तर पर सहयोग के मजबूत कइल बाटे। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आ अपराध कार्यालय के यह अभियान के नेतृत्व करेला। हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के माध्यम से आंकड़ा आ व्यावहारिक समाधान जौन बाटे ई जारी करेला। मादक पदार्थन के सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर नुकसान पहुँचेला। नशा करे वालन के साथ भेदभाव के खत्म करे ओकरा के सजा के बजाय इलाज या पुनर्वास के विकल्प देवे पर भी एकरा में जोर दिहल जाला। आ देखी श्रोता भाई, मुहर्रम आज है। मुहर्रम जौन बाटे वो इस्लामिक आ कैलेंडर के पहला महीना आ इस्लामी नव वर्ष के शुरुआत के प्रतीक है। एकरा के इस्लाम में चार सबसे पवित्र महीनन में एगो मानल जाला। खुशी मनावे के बजाय ई महीना पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन आ उनका 72 साथियन के करबला के मैदान में भय शहादत के याद में गम और शोक के रूप में एकरा के मनावल जाला। मुहर्रम के महीना के 10वां तारीख के असूरा कहल जाला, जौन कि यह महीना के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। करबला के जंग यही दिन 680 ईस्वी में एकर लड़ाई भइल रहे। आ देखी, मुहर्रम के संदेश हमनी के अन्याय के खिलाफ डटल रहल आ सच्चाई खातिर कोनो भी कुर्बानी से पीछे न हटे के प्रेरणा देवेला। तो देखी, अभी हमनी के मुहर्रम पर बात करते हैं जा। अब हमनी के चलत चलत मौसम मिजाज पर एक नज़र डालल जाओ, कल के पूर्वानुमान का बाटे मौसम के। तो देखी श्रोता भाई, कल के अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता जौन बाटे 50% आ न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता बाटे 20% रहे के भी संभावना बा। आ देखी, हवा के गति जौन बाटे प्रति किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले के संभावना बाटे। आ देखी, कल कहीं कहीं आंधी आ बिजली तूफान आदि तेज सतही हवा चले के भी संभावना बा। मौसम विभाग के तरफ से एक तरह के चेतावनी दिहल जाता, ऐसे बाहर भीतर जहाँ भी जाए होके सावधानी पूर्वक रह सब जाई जा। तो रहल देखिए मौसम संबंधी जानकारी। अब समय हो गए किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के, चले चले के बेरा में।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम सांझ गीत में आइए लेते हैं आनंद। कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का पहला भोजपुरी गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ें हैं, गीत और संगीत है रविंद्र जैन के।

सांझ गीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म नदिया के पार से आवाज़ें थीं जसपाल सिंह और हेमलता की, गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। सांझ गीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सैया से करादा मिलनवा हमार से, आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द हैं विनय बिहारी के और संगीत है ताबुन राजेश गुप्ता के।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सैया से करादा मिलनवा हमार फिल्म का यह भोजपुरी गीत। आवाजें थी उदित नारायण और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा था विनय बिहारी ने और संगीत दिया था ताबुन राजेश गुप्ता ने। कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बिहारी बाबू। शब्द हैं ब्रिज किशोर दुबे के और संगीत है चित्रगुप्त का।

आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना यह भोजपुरी गीत जिसे हमने लिया था फिल्म में बिहारी बाबू से। ब्रिज किशोर दुबे के शब्द थे और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। सांझ गीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है शारदा सिन्हा की आवाज़ में। फिल्म का नाम है देसवा। संगीत हैं आशुतोष सिंह के और इस गीत को लिखा है संतोष कुमार गुप्ता ने।

श्रोताओं, शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म देसवा का या बेहतरीन भोजपुरी गीत, जिसे लिखा था संतोष कुमार गुप्ता ने और संगीत दिया था आशुतोष सिंह ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम लीला से। पामेला जैन की आवाज़ है, शब्द हैं प्यारेलाल यादव के और संगीत से सजाया है मधुकर आनंद ने।

पामेला जैन द्वारा गाए इसी भोजपुरी गीत के साथ है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए।

गुड इवनिंग रोहतास के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं रोहतास जिले की आज की गतिविधियों पर। श्रोताओं, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजनाएं जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा कुटीर ज्योति बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रूफटॉप सोलर योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्रा ने योजना की समीक्षा करते हुए उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बियाडा क्षेत्र सहित जिले के सभी उद्यमियों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली 125 यूनिट निःशुल्क बिजली के अतिरिक्त सोलर पैनल से उत्पादित बिजली भी उपभोक्ता की खपत में समायोजित कर दी जाती है। इससे सोलर पैनल स्थापित करने वाले अनेक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य अथवा अत्यंत कम हो गया है। इसके अतिरिक्त कुटीर ज्योति बिजली उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रूफटॉप सोलर योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की छत पर सोलर पैनल बिना किसी शुल्क के स्थापित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चयन किया जा चुका है तथा प्रथम चरण में जिले के प्रत्येक प्रखंड की 5-5 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। विद्युत विभाग ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी एवं अन्य सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। श्रोता, मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन रोहतास पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। इस दौरान जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने बस्ती मोड़ सासाराम में बने कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा सीसीटीवी फुटेज एवं ड्रोन वीडियो का अवलोकन किया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के कार्य में किसी प्रकार की अनुपस्थिति, लापरवाही या शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। रोहतास जिले के सभी संवेदनशील स्थलों एवं जुलूस मार्गों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती की गई है। विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखने के लिए लगातार गश्त, एरिया डोमिनेशन एवं निगरानी की जा रही है। रोहतास प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे मुहर्रम पर्व को शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सद्भाव के साथ मनाए तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, आपात स्थिति अथवा विधि व्यवस्था से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो तो उसकी जानकारी तत्काल निकटतम थाना अथवा कंट्रोल रूम को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे रोहतास जिले की आज की गतिविधि पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा हिंदी फिल्मी गीत। इस गाने को हमने लिया है फिल्म फूल और कांटे से। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है, शमीर के शब्द हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

तो श्रोताओं, फूल और कांटे फिल्म के इसी गीत के साथ है आज का गुड इवनिंग रोहतास से का यह एपिसोड यहीं संपन्न होता है।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के

गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।

0: राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष 31 दिसम्बर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्यार्थियों की लंबित डिग्रियों के वितरण कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों के साथ मिलीभगत और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उपाधीक्षक पर जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। जेल अधीक्षक की जांच में यह भी सामने आया है कि उपाधीक्षक की ओर से बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर उनकी ओर से लाई गई सामग्री को बिना सुरक्षा जांच के जेल परिसर में पहुंचाया जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
1: मैं सबके आस्था का जगह है राम, पूरे देश के लोगों का आस्था विश्वास राम जी में है। जो भी ये किया है जिससे

0: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया, कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर वन है।
0: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से

0: नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर वन है।
1: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह स्थानांतरण विभागीय वार्षिक तबादला नीति के तहत किया गया है। इससे पहले विभाग ने 60 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर जून माह में वार्षिक तबादलों की व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है। इससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
2: शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई।
1: जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार न्याय के साथ विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के नूरसराय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। उन्होंने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में योम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमे जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर

0: मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में आज पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को खेला जाएगा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने मॉडल सदर अस्पताल में बन रहे आईसीयू का निरीक्षण किया। 4 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक आईसीयू को 30 जून तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नवनियुक्त PDS डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 7,000 से अधिक कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के परसोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात से कई घरों में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: बांका जिले में आज मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। विकसित भारत योजना और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी अंकुर अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण तथा योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बीते दिनों बांका जिले में आयोजित रोजगार सह कौशल मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 442 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान 428 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया तथा विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के बाद 14 अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया। जिला प्रशासन ने इस आयोजन को युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। आगामी 28 जून को

0: निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बांका जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में लगातार सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों के समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें पारदर्शी और त्वरित सेवा मिल सके।
1: और अब प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लखीसराय जिले में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों ने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाने पर जोर दिया। जिले के खिलाड़ियों ने बीते दिनों राज्य टाइकांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अब राष्ट्रीय टाइकांडो प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य प्रशिक्षक दादर गुप्ता

0: जिला अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री स्वच्छित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष जांच शिविर लगाए गए, जहाँ बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जाँच की गयी। बीते दिनों जिला न्यायालय में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब युवाओं ने भाग लिया, जिन्हें 13 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका और लखीसराय जिले की हलचल।
2: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद का। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम ई मनपसंद।

फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस गीतों भरे सफ़र में आप हैं अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। मैं आप सभी श्रोताओं का आज के अपने इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, हम जानते हैं कि अभी आप हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो चलिए अब आपके इस इंतज़ार की घड़ी को करते हैं ख़त्म और शुरू करते हैं कार्यक्रम ई मनपसंद। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म साजन के इस खूबसूरत गीत के साथ है, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्द हैं समीर के और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार, गढ़मुक्तेश्वर, काकाठेर की मड़ैया से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। तो कार्यक्रम का पहला नगमा लीजिए पेश है, फिल्म का नाम है साजन।

ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद कार्यक्रम की आज की शुरुआत हमने की थी फिल्म साजन के इस गीत से, जिसे गाया था कुमार उसानू और अलका याग्निक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में जूली से, आवाज़ किशोर कुमार की है। शब्द हैं आनंद बख्शी साहब के और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीमाला जी, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदाफारजू जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूलवाले, लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार, नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई, शौक चांद फारूक के फूलवाले, सईद खलील मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन शेख सलीम। तो लीजिए, आप सबों की पसंद पर पेश है किशोर कुमार की आवाज़ में यह खूबसूरत गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जूली का यह बेहतरीन गीत थे। शब्द थे आनंद बख्शी साहब के और संगीत थे, निर्देशन था राजेश रोशन का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में रोटी से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द हैं आनंद बख्शी के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

फिल्म रोटी का अभी आपने सुना या गीत आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द थे आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है संगम, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप केवल, करणवीर हाउस से भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्गे पालेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।

ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों के कार्यक्रम ई मनपसंद में अभी आपने सुना फिल्म में संगम का यह गीत, जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने, हसरत जयपुरी के शब्द थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है निकाह। हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और मुरली खूबचंद वर्मा, गुमला झारखंड से नजमूल हुदा, एस एम जावेद और शगु

श्रोताओं, ई मनपसंद कार्यक्रम में अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निकाह का यह बेहतरीन गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनोखी अदा से आवाज़ है किशोर कुमार की, मजरूह के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले आप सभी हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णवी कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड, मोहम्मद शदाब खत्री, जामा मस्जिद रोड सनावत से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, सासाराम के लोहार के निम से इस गीत को सुनना चाहते हैं नदीम अंसारी, गुड्डू अंसारी, शकील अंसारी, नसीम अंसारी और उनके ढेर सारे दोस्त। पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में अनोखी अदाकारी फिल्म में गीते शब्द मजरूह के थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गुलामी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के, गुलजार के शब्द हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनीर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। नवा शहर पंजाब से, पंजाब के गांव टोरो वाल से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्में गुलामी का यह खूबसूरत गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम पेशकश कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कच्चे धागे। आनंदराज आनंद के शब्द हैं और संगीत है नुसरत फतेह अली खान के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति, संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, गांव लोहगढ़ा ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।

तो श्रोताओं, यह है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश इसी गीत के साथ है। फरमाइशी नगमों का यह सिलसिला अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का आज का यह गीतों भरा सफर आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगले एपिसोड में श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंग

0: गर्ल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

0: के अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार

0: किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी लोकगीतों का। कार्यक्रम है लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम का पहला लोकगीत है, आइए सुनते हैं भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

प्रेम रंजन सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना यह भोजपुरी लोकगीत है। कार्यक्रम का अगला और अंतिम भोजपुरी लोकगीत है अनुपमा शरण की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, अनुपमा सिंह द्वारा गाए इसी लोकगीत के साथ है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है मनकवत और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम बंदगी। आवाज है मुस्तबा अजीज नजाकी, शब्द हैं खुर्शीद हलौरी के और संगीत है ललित सेन के।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, ऋतुएं प्रकृति की वे सुंदर कविताएं हैं जिन्हें समय स्वयं अपने हाथों से लिखता है। कभी बसंत बनकर वे फूलों की मुस्कान बिखेरती हैं, तो कभी वर्षा बनकर धरती की प्यास बुझाती है। ग्रीष्म का तेज हमें संघर्ष का पाठ पढ़ाता है, तो शरद की चांदनी मन को शांति देती है। हेमंत की ओस जीवन में ताजगी भरती है और शिशिर की ठंडक धैर्य का संदेश देती है। वास्तव में ऋतुएं केवल मौसम नहीं है, बल्कि प्रकृति के बदले भाव हैं जो हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है और हर परिवर्तन अपने साथ

0: एक नया सौंदर्य लेकर आता है। शब्द शिल्प के इस अंक में हमने इसे केंद्र में रखकर रचनाओं का चयन किया है। इस अंक में आपको कवि की कल्पनाओं में शब्द रूपी भीगी धरती की सुगंध मिलेगी, तो लेखकों की कलम से झड़ते पत्तों की नज़ाकत भी महसूस होगी। ऋतु परिवर्तन न केवल प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि साहित्य को भी नवजीवन प्रदान करता है। शब्द शिल्प हमेशा से साहित्य के विभिन्न रंगों को समेटने का मंच रहा है। ये अंक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां मौसम का हर रंग, हर रूप रचनात्मकता के सौंदर्य में ढलकर श्रोताओं तक पहुंचता है। आशा है कि ये अंक आपके मन के मौसम को भी कुछ क्षणों के लिए साहित्य की ठंडी छांव में शांति देगा। श्रोताओं, अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे, अगले खंड जरा सोचिए की ओर। श्रोताओं, जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति के बदलते स्वरूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार पर्यावरण हमारे धरती की जीवन रेखा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी ऋतुओं का ये अनुपम सौंदर्य भी बना रहेगा। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरे भरे वृक्ष हमें प्रकृति से प्राप्त अनमोल उपहार हैं। जरा सोचिए, ये सब ना हो तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। मौसम में अनियमित परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं इसकी स्पष्ट चेतावनी हैं। यदि अब भी हमने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असुरक्षित और प्रदूषित वातावरण विरासत में मिलेगा। तो आइए, पर्यावरण संरक्षण की राह पर चलते हुए हम भी अपना अमूल्य योगदान दें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। साहित्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है और पर्यावरण से ही अपनी संवेदनाएं प्राप्त करता है। हमारी कविताओं, कहानियों और गीतों में नदियों की कलकल, पंछियों का कलरव, वृक्षों की हरियाली और ऋतुओं का सौंदर्य जीवंत रूप से दिखाई देता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी साहित्य की सुंदर प्रेरणा भी जीवित रहेगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल प्रकृति का ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का भी दायित्व है, क्योंकि जहां प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं साहित्य गुनगुनाता है। तो आइए, इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और भगवत झा अन्मेष जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कविता पाठ।
1: सबसे पहले एक कविता जिसका शीर्षक है बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, धारा से लेकर गगन तक बारिशों की लय, बरसना भी है सुनिश्चित भींगना भी तय, तम तमाया तमस है नव गर्जना का भय, भाग गए आकाश में फिर घिरे घन पागल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। दूसरा अंतरा, धरा कब से कर रही थी नित नवल मनुहार, जेठ के आते ही औचक आ गया आषाढ़, प्राणियों के प्राण प्रतिपल मांगते जलधार, छा गए आकाश में फिर रंग नव श्यामल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, वेदना के गीत गाते प्राण के आधार, गुरु पूनम के दिवस में दे रहे बौछार, वज्रधर उद्दंड नायक प्रलय के अवतार, धा गए आकाश में फिर बज रहा मादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। बादल का वर्णन है आकाश में जिस जिस रूप में मुझे दिखाई पड़ा उसकी अभिव्यक्ति है। कौन इनका रूप गढ़ता दिवस में 100 बार, बैंगनी लल छौह आभा में भरे रसधार, कूचियों से नील नभ पर रंग देता झार, गा गए आकाश में फिर घन घनन काजल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल।

आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप। कभी कभी बादलों का रूप बहुत विप्लवी होता है, विद्रोही। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, जो चमकती सी लगी थी स्वर्ण वर्णा धूप। धूप में बिल्कुल अनोखा नव दुखों का कूप, खुल गया नवनील का था बंद जो सांकल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। अंतिम बंद है, कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नवगीत। कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नवगीत। कभी लगता है विकट वह कभी लगता अमित, कभी लगता है विकल सा देख जग की रीत। प्रेमियों के नेत्र में भरकर विरह का जल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। ये हमारे बीच की विसंगतियों और विडंबनाओं का विश्लेषण, गीत का शीर्षक है आदमी।

बंद जो सांकल आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल अंतिम बंद है। कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नवगीत, कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नवगीत, कभी लगता है विकट वह कभी लगता मीत, कभी लगता है विकल सा देख जग की रीत, प्रेमियों के नेत्र में भरकर विरह का जल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। ये हमारे बीच की विसंगतियों और विडंबनाओं का विश्लेषण, गीत का शीर्षक है आदमी।

खो गया है भीड़ में जो आदमी, बंधु मैं उस मौन का पर्याय हूँ, हूँ तुम्हारे बीच की विडंबना, आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगला बंध,

अगला बंद है, ठहरी ठिठकी सहमी सी यह चांदनी, कुछ अधूरे प्रश्न हमसे पूछती है, हर कमल पर यंत्र युग की यंत्रणा, आज के मन को श्रद्धा सूझती है। ठहरी

दुख भागे, बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। जगत की अम्मा जगदम्बा। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। अगहन में

आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगली रचना धान रोपती बेटियां। धान रोपती बेटियां बेटियों के श्रम से जुड़ा हुआ सौंदर्य, बेटियां आगे बढ़े अच्छा करे, इसमें बेटियों के श्रम का सौंदर्य सामने लाने का प्रयास किया गया है विनम्रतापूर्वक।

0: बेटियां सुंदरिया सलेटियां। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही। जीवन में हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है, तो हमारे भीतर के अंतर्द्वंद को छंद द्वारा अभिव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है आपके समक्ष। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही। माया करनित नौ चतुराई छल रही छल रही। होना था मुझको भी सोना लेकिन मुश्किल ऐसा होना। सपनों की नौ चित्र कथानित जल रही जल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही। अच्छे दिन आने वाले थे दुख के दिन जाने वाले थे। अरमानों की सांझ सुरमई ढल रही ढल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही। लेकिन निराश नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आशाओं को हम हेरेंगे नया तराना फिर छेड़ेंगे। आशाओं को हम हेरेंगे नया तराना फिर छेड़ेंगे। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही हल रही। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही हल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही चल रही।
1: भगवत जा अन्वेष जी से अभी आप सुन रहे थे उनकी स्वरचित कविताएं। और अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कहानी सब दिन होत न एक समान।
2: किसी गांव में संतोष नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। स्वभाव से एकदम सीधा सादा, उसके नाम के अनुरूप उसकी प्रकृति और आचरण भी था। छल कपट से दूर अपनी पत्नी ललिता और तीन बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा के साथ रहता था। वह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता

जी ने दोनों बड़े भाइयों को अच्छी शिक्षा दीक्षा पढ़ा लिखा कर ठाट बाट की नौकरी दिलवा दी थी, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण संतोष को उच्च शिक्षा व पढ़ाई लिखाई न करवाई गई। जैसे तैसे अपनी सूझबूझ बलबूते व कठिन परिश्रम से 10वीं अर्थात मैट्रिक तथा शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग जिला के महाविद्यालय से दक्षता प्राप्त तो कर ली, परंतु आगे की पढ़ाई से वह वंचित रह गया। घर परिवार में सरल व सहज होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां इसी के सिर पर लाद व मढ़ दिया गया। तीनों भाइयों के परिवार के सदस्यों का सारा बोझ इसके ही सिर पर आन पड़ा। अपने जीवन काल में न ही इसके पिता इसके साथ न्याय कर पाए और न ही नियति इसको न्यायोचित अधिकार व सुख दिला पाई। अब मरता करता भी तो क्या करता, आए वक्त संतोष की जिंदगी उहापोह व उथल पुथल से गुजर बसर होने लगी। संतोष परिवार के बोझ से दिन ब दिन धसता ही चला जा रहा था, मगर फिर भी उसके ललाट और चेहरे पर चिंता झिझक एवं परेशानियों की लकीर व रेखाएं कंचित मात्र भी नहीं दिखाई पड़ती थी। वह दुर्दिन से दुर्दिन परिस्थितियों में भी व्यथित व दुखित न दिखता था, और उसके पीठ पीछे की सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल के रूप में इसकी धर्मपत्नी ललिता थी। ललिता चंचल स्वभाव, कद पूरे 5 फुट, गौरवर्ण, फटे पुराने चिथड़े परिधान, उलझे उलझे केश, नग्न पैर, तीखे स्वर, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर हिसाब रखने वाली, कमासुत, अहर्निश, रात दिन देह तोड़ मेहनतकश औरत, कदापि थकती नहीं थी, नित्य निरंतर कामों में लगी रहती थी। स्वभाव व आचरण से अत्यंत सरल सहज शालीन स्वभाव, पतिव्रता नारी होने के साथ साथ उसे ईश्वर में अटूट विश्वास और जुड़ाव था। घर परिवार में साक्षात लक्ष्मी की मूरत थी वह। शायद यही कारण था कि संतोष को मानसिक रूप से दुखित व व्यथित नहीं होने देती थी। संबलवन सदा सहाय रहती थी, संतोष का मनोबल सतत बढ़ाती ही रहती थी, अतिशय विपदा में भी उसे समय समर पर ढांढस बंधाती रहती थी। निश्चल निष्कपट सीधा सरल व्यवहार के कारण ही संयुक्त परिवार के सभी लोग संतोष और उसके बीवी बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उन दोनों के सादगीपन और भोलापन के कारण उनका फायदा उठाते थे। घर का कोई भी सदस्य संतोष के परिवार से खुश नहीं रहता था, परंतु घर का चाहे कोई भी काज हो, बस ललिता को ही आवाज़ लगाई जीत। घर के लोग एक गिलास पानी तक ललिता से ही मांगते फिरते थे। ललिता के साथ मानो नौकरानी सा व्यवहार करते थे। विकट से विकट स्थिति में जीवन यापन करने वाली अडिग नारियल की तरह ऊपर से सख्त अंदर से कोमल ललिता ना तो कभी किसी से झुंझलाकर बोलती और ना ही कभी ईश्वर को कोसती थी। परिवार के सभी लोग ऐशो आराम से घर में रहते, परंतु ललिता हर मौसम चाहे वह पूस की मलमली हो, ठेहुन भर बरसात या फिर भीषण गर्मी या चिलचिलाती दोपहरी, भोर में उठती चूल्हा चौकी घर आंगन लीप पोत कर चकाचक कर नहा धो पूजा पाठ कर सबके लिए खाना पकाती। ललिता में एक और सुंदर गुण था कि जब तक ईश्वर की पूजा नहीं करती तब तक मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालती। सभी लोग खाना खा लेते जो शेष बचता खुसता व संतोष के परिवार को नसीब होता। भोर भिनसार में उठकर कांधे पर कुदाल लादे संतोष निर्जल बिना कुछ खाए भूख से तड़पता हल चलाकर घर को लौटता है, तब अपनी पत्नी ललिता को आवाज़ देता है, किधर हो ललिता, सुन रही हो? ललिता, अगर रसोई के चूल्हा चौका पर कुछ बचा कुचा हो तो ले आओ, जोर की भूख लगी है। ललिता अपने पति के थकान भरे स्वर को सुनते ही मन कचोटती हुई हामी भरती है, जी अभी लाई। थाली में सिराए मांड भात परोसती है और अंदर ही अंदर फफक फफक कर रोने का प्रयास करती है, परंतु दर्द हलकान करने वाले आंसू कोरे सुघड़ नैनों में सूख जाते हैं। ललिता खाना परोसती हुई, लीजिए स्वामी, बहुत दिनों से घर में राशन पानी नहीं है, सबको पता भी है, परंतु मास्टर साहब यानी बड़का भैया चाहे मंझला भैया के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। अगर मैं ना पकाऊं तो घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बस एक आपका मुख दिख जाता है कि आप खेत पर से लौटेंगे तो क्या खाएंगे। लीजिए स्वामी खाइए। संतोष ललिता के चिंता को दूर करते हुए ध्यान भटकाते हुए कहता है, अरे वाह ललिता, नए का चावर का भात पकाई हो। ललिता तपाक से उत्तर देती है, जी हाँ,
आप ताल वाले खेत में जो धान बोए थे उसी धान का नयका चाउर

और डीह में जो आलू बोए थे उसका चोखा। रात दिन खेत खलिहान और अन्य अन्य कार्य कर लौटा थका हारा संतोष अन्न का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालता है वैसे ही उसको अपना बेटा बेटी याद आते और फिर ललिता से पूछता है, ललिता बच्चों को खाना खिलाई और तुमने नहीं खाई? ललिता के मुखमंडल पर अशांति की रेखाएं, शारीरिक और आंतरिक क्लांति को भांप संतोष ने कोमल भरे स्वर में कहता है, ललिता तुम्हारे उद्विग्न और उद्वेलित भाव से सब कुछ बयां हो रहा है। देख पगली, ये जीवन रूपी चक्र है, यहाँ उतार चढ़ाव, आशा निराशा, सफलता असफलता, सबको स्वीकार ही करना पड़ता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे समय व मोड़ आते रहते हैं जो हमें अवसाद और विषाद की खाई में पटक ही देते हैं। ऐसे में मन अशांत रहता है। हमारे आसपास के लोग एवं सभी भौतिक चीज़ें तुम्हें परेशान कर हमारे सभी सुख छैन छीन ही लेते हैं, परंतु ऐसी मुश्किल हालातों में, कारुणिक परिस्थितियों में हमें हमारे मन आत्मा को मजबूत और सबल प्रदान करने और बनाने की ज़रूरत है। ललिता तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है ना? बस उन पर ही भरोसा रखो। आज हमारा वक्त और समय भले ही अनुकूल न हो परंतु ललिता सब दिन होते एक समान, इसलिए तुम सत्य से मुंह मत मोड़ो और व्यक्त की सोच और पचड़े में पड़ अपना समय मत गंवाओ। कहते समझाते थके हारे संतोष को स्वाभाविक ऊंघाई आने लगती है और फिर वह अपने हिस्से के मिले छान छप्पर की कोठरी में गुदड़ी ओढ़ कर सो जाता है। ललिता बचे खुचे अन्न को लेकर खाने बैठती है और बच्चों को अन्न के कुछ एक दाने जैसे ही मुंह में डालती है तैसे ही उसकी बड़की ननद सुनीला, जो स्वभाव की बिल्कुल झगड़ी, लड़ने वाली, कटु कर्कश आवाज, ईर्ष्या द्वेष तो कुट कुट कर भरा हुआ, देवड़ी से उद्वेग भरे स्वर में आवाज लगाती है, ललिता अरे ओ ललिता कहाँ मर गई? देखो छुट्टी पर बड़का भैया आए हैं, पैर प्रक्षालन के लिए गर्म पानी कर ले आओ और संतोष को बोलो जाकर दुकान से जलपान के लिए कुछ मर मिठाई का इंतजाम करे। संतोष की आंखों में नींद दस्तक ही दी थी कि अजी सुनते हैं बड़का भैया जी आए हैं, जाइए जलपान आदि की व्यवस्था कीजिए। ललिता उधर से चूल्हा चौकी पर कठौती में पानी गर्म कर लाती है और जरा सी देर क्या हो जाती है सुनीला उसे हजार अपशब्द, खरी खोटी गालियां और बुरा भला कहती है। एक तो इतने दिनों के बाद घर आए हैं पर न जाने यह औरत किस अंतःपुर में लीन रहती है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के थाली खाकर बस सो ही रहती है। देख ललिता ऐसा रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। सुनीला के तीखे शब्द बाण के प्रहार ने ललिता के कोमल हृदय को छलनी छलनी कर दिया, बेचारी को मानो काठ मार दिया। वह चुपचाप भीत की भांति खड़ी खड़ी सारी जली कटी बातें सुन रही थी। संवेदनशील हृदय होने के कारण वह भाव विह्वल हो गई। उसकी आंखों में निश्चल आंसू ढुलकने ही वाले थे कि उसके बच्चों की रोने की आवाज आई। संतोष भी एक कोने में खड़े होकर भाभी की खरी खोटी चुपचाप सुन रहा था। ललिता डर के मारे टस से मस और मुंह से उफ तक न की। संतोष मन ही मन यह सोच रहा था कि दुखियारी बेचारी ललिता मेरी गैर मौजूदगी में कितनी कष्ट सहती होगी। संतोष मन ही मन बुजुर्गों की एक कहावत बुदबुदाता है, लोग ठीक ही कहते हैं कि सीधे की मुंह कुत्ता चाटता है, सीधे लोगों को ही दुनिया बुरा भला कहती और ठगती। संतोष ने ललिता से कहा, ललिता जाओ बच्चों को देखो वो कब से बिलख रहे हैं। ललिता झट वहां से चली जाती है। ऐसे ही घर परिवार आस पड़ोस को सुनते सहते, हालातों को पुचकारते, समय के थपेड़ों को सहते रहते, हालात की आंच पर पक वक्त की कसौटी को परखते संतोष और ललिता को कई वर्ष बीत गए। संतोष के दोनों बड़े भाई भी अर्धशिक्षित मूर्ख जाहिल क्रूर की भांति तमाशबीन बन पड़ जाते थे। संतोष के विषम परिस्थितियों में न तो कभी मददगार बने न ही इन दोनों के असहाय दाम्पत्यों की व्यवस्था और लाचारी समझी। यहाँ तक कि जब दोनों भाइयों का सारा काम काज का निपटारा, सभी लड़के लड़कियों की शादी ब्याह संपन्न हो गया तब अंततः संतोष और ललिता को उनके भौतिक सुख सुविधाओं को छीन भिन कर मारपीट अलग कर दिया। ऐसे स्थिति में दोनों जाए तो जाए कहाँ, एक ही काल कोठरी सम घर में बारहो मास आठो पहर जैसे तैसे भूखे प्यासे गुजारा करते रहे, 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर हाथ फैलाते फिरते रहे। जिस वक्त दाम्पत्य जीवन सुख भोगना चाहिए उस वक्त उन दोनों का नव यौवन सौंदर्य तो टहल टिकोरा आभा भगत सेवा शुश्रूषा में नौकर चौकर ज्यों व्यतीत हो जाता है। फिर भी संतोष और ललिता ने अपना मनोबल, अंतर्विश्वास, हौसला, दृढ़ संकल्प एवं परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति स्वयं को कभी थकने हारने विचलित होने व मरने न दिया। परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल होती गई परंतु हालात की आंधी से मन रूपी मोमबत्ती को हौसले और उत्साह से बुझने न दिया। संतोष और ललिता ने हौसले के तर्कश

0: में कोशिश का वो तीर सदैव जीवंत रखे। जिंदगी उनके साथ हजार दांव पेच क्यों न खेलती रही हो, पर एक कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। वह सुबह कभी तो आएगी कि उम्मीद उन दोनों के जीवन में नौ सवेरा लेकर आता है। संतोष के द्वारा लिया टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी की वैकेंसी खबर सुनकर संतोष का जीवन रुपया बगिया खिलखिला उठा। वैकेंसी विज्ञापन जैसे ही आई, संतोष ने फॉर्म अप्लाई किया। संतोष का अथक प्रयास और ललिता का भगवान व अपने पति के प्रति अटूट भक्ति, आस्था, विश्वास, नित्य निरंतर पूजा पाठ का प्रतिफल क्या खूब रंग लाया। संतोष जिला के ही एक विद्यालय में शिक्षक का पद ग्रहण कर सुशोभित करता है। ललिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहता है। ललिता कभी हंसती और कभी रोती है। इस ललिता की आंखों में खुशी के असली आंसू के मोती झर रहे थे। ललिता के लिए उसके जीवन का यह ऐसा क्षण व पल रूपी मरहम था जो उसके संपूर्ण जीवन के चोट घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहा था।
1: श्रोताओं, अभी आप सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुन रहे थे बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वास्तव में श्रोताओं, समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए तो कहते हैं, आज अगर आंखों में पानी है कल होठों पर मुस्कान होगी, आज अगर राह कठिन है तो कल मंजिल आसान होगी। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। इसलिए तो कहते हैं, सब दिन होत न एक समान। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ आज के शब्द शिल्प की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला कार्यक्रम रसरंग बस थोड़ी देर में।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने लिया है मुस्तफा अजीज नजा की आवाज़ में। एल्बम का नाम है चश्मे करम सरकार। खुर्शीद हलौरी के शब्द हैं और संगीत दिया है ललित सेन ने।

रसरंग कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना अभी आपने सुना मुस्तफा अजीज नजा की आवाज़ में। एल्बम का नाम था चश्म करम सरकार। खुर्शीद हलौरी के शब्द थे और संगीत था ललित सेन का। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम क्या खूब बनाया है से। साधना सरगम और आज़म अली मुकर्रम की आवाज़ें हैं। दयाराम दर्द फिरोजाबादी के शब्द हैं और आज़म अली मुकर्रम ने इसे संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना क्या खूब बनाया है एल्बम से यह एल्बम गाना, जिसे गाया था साधना सरगम और आजम अली मुकर्रम ने। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम शिकवा से। मनोज कुमार गुप्ता की आवाज़ है, शैलेंद्र शर्मा के शब्द हैं और संगीत दिया है सबाब आजमी और अमित विश्नोई ने।

मनोज कुमार गुप्ता की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम शिकवा का या एल्बम गाना। शैलेंद्र शर्मा के शब्द थे और संगीत था शबाब आज़मी और अमित विश्नोई के। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम का शेष गाना अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्वतः रसरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम तुझे भूलना तो चाहा से, आवाज़ जुबिन नौटियाल की है। मनोज मुंतशीर के शब्द हैं, रोचक कोहली और निखिल विनय ने इस गाने को संगीत से सजाया है।

तुझे भूलना तो चाह। जी हाँ श्रोताओं, अभी इस एल्बम का अभी आपने सुना यह एल्बम गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, मनोज मुंतशिर के शब्द थे, रोचक कोहली और निखिल विनय ने इस गीत को संगीत से सजाया था। श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश अखिल सचदेवा की आवाज़ में, एल्बम का नाम है यारों रब से दुआ करो। रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने इसे लिखा है, मीट ब्रॉस और निखिल विनय के संगीत हैं।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम गाने के साथ है, एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत है, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दुश्मन, शब्द हैं आनंद बख्शी साहब के, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

चित्रपट राणे कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म दुश्मन का यह बेहतरीन गीत। आनंद बख्शी के शब्द थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बड़े दिलवाला का यह गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म में बड़े दिलवाला का यह बेहतरीन गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द थे और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत है, आइए सुनते हैं फिल्म आए दिन बहार के से। आवाज़ें महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की है। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब चित्रपट तराने कार्यक्रम की आखिरी गीते महेंद्र कपूर और बलवीर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। शाहिर ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन है इन दत्ता का।

तो श्रोताओं, धर्मपुत्र के इसी गीत के साथ है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस पाठ संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार। 11:00 आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 11:25 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।

कल शाम 5:30 पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित करेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीत। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से हेलो मनपसंद कार्यक्रम, जो फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम है, आप सुनेंगे शाम 7:50 पर।

8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून को जिले में लू यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।